FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है शुक्रवार, शक संवत 1948, आषाढ़ माह, 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 6 बजे हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हम समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती वंदन।

आज का चिंतन। साथियों, जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में आप अकेले ही होंगे और यही समय आपको बुद्धिमान, समझदार और निडर बनाएगा। इसीलिए डटे रहें। ये था आज का चिंतन। अब भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं। झरोखा में अब जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8 बजे। सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। दस बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाते हैं। 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आप सुनेंगे। इस प्रोग्राम में आज का टॉपिक रहेगा धीमी रफ्तार अपनाइए, बारिश में पैदल यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाइए। यानी बारिशों के इस मौसम में हमें पैदल चलने वालों का भी ख्याल रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक रहेगा कि धीमी रफ्तार अपनाइए, बारिश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाइए। स्पॉन्सर प्रोग्राम हमारी बेड़ियां, दिन में 11:15 पर लाइव फरमाइशी कार्यक्रम होगा। म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। इस प्रोग्राम में आप अपनी फरमाइश का सिलसिला भेजने के लिए हमें शुरू करेंगे सुबह 10 बजे। और प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे 11:15 पर प्रोग्राम रहेगा म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर हिंदी में, 1:10 पर पंजाबी में। दोपहर 12 समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

शाम 6:30 पर अमृत वाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शपथ। इससे पहले 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जा रहे हैं। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे दोपहर 1:15 पर, शाम 5:05 पर।

समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, और रात 11 बजे

झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की, उन कार्यक्रमों की जो आकाशवाणी चंडीगढ़ से आपके लिए दिन भर पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती मुंबई से प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम है श्री रामचरित मानस।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी, आप बताइए लोक संगीत में बांसुरी का क्या योगदान रहा है? बहुत सारे जो गायन के प्रकार हैं, ठुमरी है, झूला, कजरी, चैती, तो आप इन गायन के प्रकार में बारीकियां बताइए और कैसे आया लोक संगीत में बांसुरी?
2: देखिए, बांसुरी तो लोक संगीत का ही वाद्य है
1: जी,
2: शास्त्रीय संगीत में तो था ही नहीं है,
1: बाद में आया।
2: पन्नालाल घोष जी नहीं होते तो आज भी नहीं होता
1: जी। जी,
2: तो जैसे चैती, झूला, सोहर, ठुमरी, कजरी, क्या नहीं बसता। अब आप बताइए, दो अंग के ठुमरी, खास करके पूरब अंग जिसमें गया की ठुमरी, बनारस की ठुमरी
1: जी,
2: दोनों कमाल है। गया भी कोई पीछे नहीं है। और पंजाब में आप चले जाएं तो थोड़ा नाक से नेजल होके गाते हैं। इन सब अंगों को मैंने बहुत करीब से देखा है ममता जी,
1: जी और बांसुरी में लाया उस,
2: लाया उसको
1: बिल्कुल।
2: यहाँ तक कि अनूप जलोटा जी बोले कि सबसे अच्छा, मैं कुमार बोस जी के साथ एक कार्यक्रम नेहरू सेंटर में बजा रहा था
1: जी,
2: अजीत भाई भी प्रोग्राम सुनने आए थे और ऐसा धमार पंडित कुमार बोस जी बजाए थे कि क्या कहूँ आपसे
1: जी, जी।
2: मैं भावुक हो गया हूँ उनका तबला याद करके। ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं,
1: बिल्कुल
2: कभी कभी आते हैं ऐसे लोग, बड़ा अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ बजाते हैं। खैर, मैं खो गया था
1: जी।
2: तो अनूप जलोटा जी ने कहा कि आपने एक फ्रेज में जो आज पंजाब से बनारस गए वो सुनने जैसा था, मैंने ये कभी नहीं सुना आज तक। जलोटा जी खाना खाने के लिए ले गए मुझे प्रोग्राम के बाद, तो मैं दोनों अंग थोड़ा थोड़ा आपको
1: जी। मैं तो आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ श्रोताओं को भी ले चलिए बनारस और पंजाब एक साथ, कैसे आप जाते हैं?
2: आप देखिए, मैं सबसे पहले झूला धीरे से झूला ना बनवारी अरे सांवरिया,
1: क्या बात है, वाह
2: इसका क्या रंग है देखिए
1: जी। और ये अप्पा जी ने, विदुषी गिरजा देवी ने भी गाई है ये हमारे पास।
2: मेरे लिए तो वो गिरजा बुआ है
1: जी, जी
2: है। देखिए, मुझे कभी लगता ही नहीं कि वो गई है, और लगता है कि वो, क्योंकि मेरे पिताजी को राखी बांधती थी बनारस में,
1: तो
2: मेरे लिए बुआ जी है
1: जी। जी, जी।
2: अप्पा जी लोग कहते हैं, मैंने हरदम उनको बुआ जी कहा, और महाराज जी को चचा
1: जी, जी।
2: किशन महाराज जी को
1: जी।
2: और बनारस में हम लोग बड़ों को तू कहते हैं
1: जी। जी, जी।
2: का हो तू, का करत हुआ,
1: हाँ, हाँ।
2: तो तुहार आज्ञा हो तब ना बजाई, तो ये चलन है वहाँ का।
1: तो यहाँ तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप चूंकि गायन की कला में भी

0: वाह, अद्भुत था ये तो। ये रचना बिल्कुल अद्भुत है। झूला ऐसे लग रहा है कि नीम का पेड़ है और झूला डला हुआ है, पटोहा है और पटोहे पे दो लड़के पींग मारा करते थे और महिलाएं पटोहा पे बैठ के ये झूला गाती थी।
1: जी,
0: गाती हैं थी क्या? अभी भी ये परंपरा है?
1: अभी ये परंपरा है ना
0: जी। और अब कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि पेड़ ही कम हो रहे और लोगों के पास समय कम हो रहा, मोबाइल आ गया है, लेकिन अभी भी परंपरा गांव में शेष है। तो वो सीन, वो दृश्य आपने आंखों के सामने पैदा कर दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत अच्छा लगा। तो अब इसके बाद गायन की कौन सी शैली, कौन सा प्रकार आप शामिल कर रहे हैं इसमें?
1: मैं देखिए, ये लोक संगीत में जब हम जाते हैं तो बंगाल को छोड़ नहीं सकते
0: जी,
1: क्योंकि बंगाल को दुनिया दिखाया किसने?
0: जी
1: सचिन देव बर्मन ने
0: जी, भटियाली संगीत।
1: भटियाली को सुनो मेरे बंधु रे, जब उन्होंने किया और उन्होंने जब गाया फिल्म सुजाता में
0: जी,
1: तो लोग हैरान रह गए कि ये क्या है, यहाँ कौन है तेरा, ये कहाँ का स्टाइल है। गाइड का वो गाना, मुसाफिर जाएगा कहाँ, सुन मेरे बंधु रे में आप देखिए, मैं थोड़ा सा सुन मेरे बंधु रे सुना के फिर मेरे पिताजी की रचना जो है भाटियाली में वो सुनाऊंगा। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: आई थे, मेरे पति मुझे शहर घुमाने ले जाएंगे,
1: वाह
0: उसलिए मैंने ये तैयारी की है। ये
1: जी
0: गाने का
1: जी
0: बोल भी बहुत सुंदर है।
1: जी जी सुनाए प्लीज। हम तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा गा के भी सुनाएं, बांसुरी पर भी सुनाएं।

0: वाह, अद्भुत। अब लग रहा है कि कुछ बात ही न करें, सिर्फ बस आपसे अनुरोध करते जाएं कि बांसुरी की धुन आप सुनाते
1: बहुत
0: रहें।
1: बहुत शुक्रिया।
0: लेकिन हमें पता है कि आपकी सांस को भी थोड़ा विराम चाहिए, ठहराव चाहिए, बीच बीच में हम बातें भी करते रहें। तो पंडित जी, अपने पिताजी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए, उन्होंने तो बांसुरी की दुनिया में आपको लाया।
1: हर व्यक्ति को अपने पिता भगवान के बराबर लगते हैं और लगना भी चाहिए। मेरे पिताजी थे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, कल्पेश ने भी देखा कि वो कितने संत थे और एक फकीर की तरह थे
0: जी,
1: और इतने गुण एक व्यक्ति में मैंने तो नहीं देखा।
0: जी जी
1: पंडित रविशंकर जी ने कहा मुझे, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने, यू आर लक्की टू हैव सच फादर। उनके जैसी पेंटिंग ना किसी ने बनाया ना कोई बनाएगा आगे भी। नेहरू जी उनके फैन थे। उनके जैसी भाटियाली मैं तो आज भी नहीं बजा सकता
0: जी।
1: मैंने कोशिश की उन्हीं की कंपोजिशन। उनके जैसा राइटर सोचिए, कोत्ता यामा लोहिया जाबे शहर दिखाई थे, एबीसीडी एक्सो वाइजेड लागलो पढ़ाई थे, तो कैसा राइमिंग है देखिए, रदीप काफिया जो बोलते हैं हम
0: जी
1: लोग।
0: जी जी
1: बंगाली में बहुत मुश्किल है फनी गाना लिखना।
0: जी जी
1: इतना आसान नहीं है
0: जी, बिल्कुल। गंभीर लिखना आसान है,
1: गंभीर लिखना आसान है,
0: बिल्कुल मजाही
1: तो
0: लिखना मुश्किल।
1: बहुत ही ज्यादा उनसे मैंने सीखा और उन्होंने मुझे पीलू में, बनारसी पीलू उनसे जो सीखा मैंने, कोमल रे लगाना, मैं 2 मिनट आपको सिर्फ
0: जी जी सुनाए प्लीज।
1: पीलू का रे सुना रहा हूं मेरे पिताश्री की याद में।

0: वाह गजब। अब आज की इस कड़ी को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। कल नई जानकारी और बांसुरी की तान के साथ उपस्थित होंगे फिर से। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में

बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस थोड़ी ही देर में।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैनरी, नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती।
1: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत अफसाना फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, असद भोपाली का लिखा गीत है, हुस्न लाल भगत राम का संगीत। श्रोताओं आपको बता देते हैं कि गीतकार असद भोपाली का आज जन्मदिन है, उन्हीं की याद में आज हम उन्हीं के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तू नहीं और सही, इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, असद भोपाली का लिखा गीत, रवि का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और

0: यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार असद भोपाली के द्वारा लिखे गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत, आया तूफान फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और ऊषा मंगेशकर की है। असद भोपाली गीतकार हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में स्वागत है। अब आपको सुनवाते हैं रंगीला राजा फिल्म का गीत, तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की युगल स्वरों में। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा, शिवराम का संगीत है।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित

0: उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का,
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं असद भोपाली के शब्दों से और हंसराज बहल के संगीत से सजा ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, फिल्म का नाम है सावन।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा और मुबारक बेगम के स्वरों में। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा, एआर कुरैशी ने धुन बनाई है। फिल्म का नाम है सिम सिम मर्जीना।

0: बादल फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आपको सुनवाते हैं पहला गीत पारस मणि फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। असद भोपाली का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा। आज हम याद कर रहे हैं गीतकार असद भोपाली को।
1: वो जब याद आए।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

फिल्म आग से ये गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। असद भोपाली का लिखा गीत, उषा खन्ना की बनाई धुन।

0: करूं। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
0: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
0: समझ गया।
2: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान ज़ुल्फ़ें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।

0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: रूप तेरा मस्ताना, ये है अगले गाने की फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों के स्वरों में ये गीत है। गीतकार असद भोपाली और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हुस्न और इश्क इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। असद भोपाली का लिखा गीत, गणेश ने इस गीत की धुन बनाई है।

अब हमेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नाग मंदिर फिल्म से ये गीत है। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं। गीतकार असद भोपाली, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की बनाई धुन पर।

नागमंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की अब यहीं संपन्न होता है। आज गीतकार असद भोपाली के जन्म दिवस के अवसर पर हमने उन्हें कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और हम हेरा ही प्यार की में याद किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार प्रभात। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इजरायली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा

0: और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने

0: और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
1: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107।

0: 2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी।

वंदे मातरम। इन शब्दों के प्रचार में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण पूरे देश में चल रही स्वाधीनता की लड़ाई वंदे मातरम शब्दों पर केंद्रित

रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुओं पर भी वंदे मातरम शब्द दिखने लगे, राष्ट्र ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द आ गए और आम लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वाले समाचार पत्र भी इसमें पीछे

0: भारत की कई भाषाओं में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र या साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाएं निकलने लगीं और इसकी शुरुआत स्वाभाविक रूप से बंगाल में हुई। बंगाल के विभाजन के विरोध में जनमत तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण काम स्वदेशी अखबारों ने किया। युगांतर, अमृत बाजार, संध्या जैसे पत्रों ने अत्यंत कड़े और उग्र शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए हो रहे दमन तथा अत्याचारों का विवरण आम जनता तक पहुंचाया। वंदे मातरम में दश प्रहरण धारिणी यानी 10 शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा का वर्णन करते हुए भारत माता को वाणी विद्या दायिनी भी कहा गया है। उसी सरस्वती की लेखनी इस लड़ाई में एक शस्त्र की तरह उतरी।
1: अमृत बाजार के मोतीलाल घोष और युगांतर के बारिंद्र कुमार घोष उग्र विचारों वाले राष्ट्रभक्त थे। उनके समाचार पत्रों पर पाबंदी और मुकदमे की तलवार हमेशा लटकी रहती थी, फिर भी उन्होंने अपने शब्दों की धार कम नहीं की। वंदे मातरम शब्दों को उन्होंने लोकप्रिय तो किया ही, साथ ही उसके आशय को लोगों के मन में बसाकर उसे आचरण में लाने के लिए दिल से प्रयास भी किए। अप्रैल 1906 के युगांतर के अंक में संपादक लिखते हैं,
0: रक्त में समा चुके स्वतंत्रता के बीज को कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती। आज का धर्म है शहादत, कल का धर्म होगा विजय। शहादत बलिदान आवश्यक है ही, पर वो शेर के सामने बकरी द्वारा किया गया बलिदान ना हो।
1: और उसी 11 नवंबर 1906 के अंक में लिखते हैं,
0: जैसे को

0: ऐसा व्यवहार करो, घूसे का प्रहार हो तो लात मारो, तभी तुम्हारा पौरुष दिखेगा। मृत्यु से मत डरो, उस समय होठों पर वंदे मातरम का नारा ही जीवन संगीत बनने दो।
1: अप्रैल के संध्या के अंक में लिखा गया,
0: शांत रहना राष्ट्रीय आत्मा का अपमान है, अपमान का बदला प्रतिशोध लेने से ही होता है।
1: 26 मार्च 1907 को युगांतर के पत्रकार लिखते हैं।

0: राष्ट्रीय आत्मा का अपमान है। अपमान का बदला प्रतिशोध लेने से ही होता है।
1: 26 मार्च 1907 को युगांतर के पत्रकार लिखते हैं,
0: धूल में पड़ी फटे चिथड़े पहनी हुई मां को देखो, उसके आंसू कौन पोछेगा? उसके अपमान का बदला लेने सबसे पहले कौन आगे आएगा? कर्तव्य का मार्ग स्पष्ट है, युद्ध निकट आ गया है, विजय मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा? हे वीरों, जल्दी करो, गति दोगुनी करो, मां के वैभव के लिए दान करने आगे आओ। गीता में कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम।
1: संध्या के 15 मई के अंक में छपा ये लेख बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ के एक संवाद से मिलता जुलता है। नवंबर के दैनिक हितवादी के अंक में लिखा गया,
0: युद्ध के नगाड़े बजने दो, मां को रक्त स्नान कराओ, शत्रु का हृदय कांप उठेगा।
1: युगांतर के एक और अंक में प्रखर शब्दों में आह्वान किया गया था,
0: वंदे मातरम की घोषणा ने शत्रु का धैर्य और सामर्थ्य नष्ट कर दिया है। देखो, मां के मुख पर विजय की मुस्कान है, वो हमें अभय दे रही है, दानवों का नाश करने के लिए वो तैयार हो गई है। देशभक्तों, तैयार हो जाओ।
1: वंदे मातरम ये अखबार तो नाम से ही खुलेआम क्रांतिकारी कार्य का मुखपत्र था। बंग भंग विरोधी आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरह बिपिन चंद्र पाल भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के आग्रह पर बिपिन चंद्र पाल ने नए शुरू हो रहे वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का संपादक पद स्वीकार किया। उस समय अरविंद घोष बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी कर रहे थे। अगस्त 1906 में वे भी कलकत्ता लौट आए और राजनीति में भाग लेने लगे। वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के लिए क्रांतिकारियों के नेता हरिदास हल्दर ने 500 रुपए दिए थे। राजा सुबोध चंद्र मलिक भी नियमित रूप से आर्थिक सहायता करते थे।
0: वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का आदर्श वाक्य था, भारत भारतीयों के लिए। परंतु दो ही महीनों में बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम के संचालकों से मतभेद हो गए और उसके बाद श्री अरविंद घोष संपादक बने। संध्या और युगांतर इन दो अखबारों के बाद वंदे मातरम यह पत्र शुरू हुआ और इन दो समाचार पत्रों की तरह ही वंदे मातरम ने भी समाज के मन में बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति पैदा की। श्री अरविंद संपादक बने और वंदे मातरम के लेखन में पैनापन आ गया, एक धार सी आ गई। सरकार की ऐसे अखबारों की सामग्री पर बहुत बारीकी से नजर रहती थी, इसलिए श्री अरविंद इतनी सावधानी से लेख लिखते थे कि कानूनी तौर पर सरकार उन्हें फंसा नहीं सकती थी। फिर भी उस सामग्री में राष्ट्रभक्ति और युवाओं के लिए आवाहन अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया जाता था। वंदे मातरम के इस मिले हुए अस्त्र का सटीक उपयोग कैसे करना है, ये श्री अरविंद ने इस समाचार पत्र के लेखों द्वारा जनता को दिखा दिया था। श्री अरविंद उस समय युवाओं के क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। बड़ौदा के समय में एक उत्तम प्रोफेसर के रूप में विख्यात थे। वे उत्तम कवि भी थे। केसरी के लेखों द्वारा समाज के मन पर हुए प्रभाव को वे जानते थे। तिलक की तरह ही अत्यंत विस्फोटक भाषा में उन्होंने वंदे मातरम में लेख लिखना शुरू किया। केसरी में तिलक के अग्र लेखों की तरह ही श्री अरविंद के वंदे मातरम के लेख भारतीय पत्रकारिता साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। आनंद मठ का पहला अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने शुरू किया था।

बाद में उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष ने उसे पूरा किया। वंदे मातरम गीत के श्री अरविंद द्वारा किए गए दो अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध है। ये अनुवाद वंदे मातरम के सर्वोत्तम अनुवादों में गिने जाते हैं।

0: Light with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free, glory of midnight dreams, over thy branches and lordly streams, clad in thy blossoming trees, mother.
1: आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय मन में नहीं कोई भरम वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम वंदन है वंदे मातरम जय घोष

0: मातरम एक जय घोष। इस श्रृंखला की ये थी 36वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
4: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
6: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
5: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध।

0: है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
0: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
1: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
2: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
4: लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हाजिर हो गए हैं और आपकी मंगल कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सुनवाते हैं आपको पहला गीत क्रिएचर फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज़ में टोनी कक्कड़ ने इस गीत को लिखा है और मिथुन का संगीत है।

कार्यक्रम चित्रलोक में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मन से। उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में ये गीत है। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है संजीव दर्शन ने।

कुणाल गांजावाला की आवाज में अगला गीत सुनिए। इरशाद कामिल की रचना है, संदेश चांडिल्य का संगीत, तुम मिलो तो सही फिल्म का नाम।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
5: राघव और राजा हसन के युगल स्वरों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। अशोक मिश्रा गीतकार हैं और शांतनु मोइत्रा की बनाई धुन है। फिल्म का नाम है वेल डन अब्बा।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक छोटी से ब्रेक का।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म का गीत। वाजिद, मीका सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, प्रसून जोशी की शब्द रचना, तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने।

विशाल डडलानी और सुनिधि चौहान की आवाजों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विक्की डोनर फिल्म से। स्वानंद किरकिरे की रचना है, डॉन एंड बैन का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐश किंग और रिजवान अली खान साथियों की आवाजों में ये गीत फिल्म रश से। आशीष पंडित ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं।
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
0: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरफरोश से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

क्या यही प्यार है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में, रश्मि विराग और आनंद बख्शी के बोल हैं, अमाल मलिक और आजी बर्मन का संगीत।

अरमान मलिक की आवाज में अभी ये गीत सुन रहे थे आप। गीतकार और संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। रश्मि विराग की रचना थी, अमाल मलिक का संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, प्रसून जोशी की रचना, जतिन ललित की बनाई धुन।

0: फिल्म फना का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, और ये गीत बना आज के कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम है आज का अखबार, बस अब से कुछ ही पलों में। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
3: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
5: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
4: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
5: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
6: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: आज का अखबार।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ हैं और साथ हैं तो अखबारों से ली गई खबरें इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे जितनी संभव हो सकती हैं। साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करते जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बारे में बात करें, इससे जुड़ी खबरें हैं, तस्वीरें हैं आज के अखबारों में। एक बेहद सफल दौरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, भारत की यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करेगा ऑस्ट्रेलिया, हमारे क्लीन एनर्जी के कार्यक्रमों के लिए, इसके साथ साथ साइबर टेक्नोलॉजी और आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर अहम समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके समकक्ष एंथनी अल्बनीज के बीच 18 अहम समझौते हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में जुटे लगभग 30,000 से ज्यादा लोग। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शो हाउसफुल, इस कार्यक्रम में लोग अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपना उत्साह दिखा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की दोस्ती क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह लंबी चलेगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यूरेनियम मिलने से भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम को मिलेगी गति। और अब बात करते हैं देश के मौसम के बारे में। मौसम के मानसून की बात करें तो पूरे मूड में बरस रहा है मानसून। जून में बारिश की कमी जुलाई में हो रही है पूरी, लेकिन कहीं कहीं मानसून का प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में 15 जुलाई तक अलर्ट बताया गया है। मौसम की खराब स्थिति के चलते उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन का शिमला दौरा रद्द हो गया है। महाराष्ट्र में बाढ़ से बह गए 3,000 गैस सिलेंडर्स। उत्तराखंड में गंगा यमुना उफान पर है। महाराष्ट्र में कचरे का पहाड़ ढह गया। अब भारी बारिश तूफान की है चेतावनी। वैसे दोस्तों, ये जो मौसम है मानसून का, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगर इस मौसम में नुकसान ना हो, जानमाल का नुकसान ना हो, तो ये मौसम सबके लिए सुहाना।
1: कहो तो

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस पर एक नजर दौड़ाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई हुए सपुर्द-ए-खाक। उनके गृह नगर मशहद में इमाम रजा दरगाह में इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा 7 दिनों में 3.5 करोड़ लोग जुटने का दावा। उधर ईरान के परमाणु ठिकानों के पास अमेरिकी हमला, जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। हॉर्मूज में तनाव से भारत के तेल आयात पर असर नहीं। अमेरिका H-1B ग्रीन कार्ड और छात्र वीजा से जुड़े नियम और सख्त होंगे। चीन में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े बांध की जमीन के नीचे दरार। सस्ते होंगे स्मार्टफोन आयात शुल्क हटा। कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में अल नीनो से ग्रामीण खपत में नरमी, कपास और सोयाबीन की बुवाई ने पकड़ी रफ्तार। खेलों की दुनिया में चलें तो खेलों की दुनिया में भारत ने फिर किया कमाल। एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण के साथ 5 पदक जीत लिए। चीन में हो रहे हैं ये मुकाबले। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 40 साल के बाद बदला लेने के लिए उतरेगा स्पेन, क्वार्टर फाइनल के लिए बेल्जियम भी तैयार। और इंग्लैंड के साथ T20 मैच की बात करें तो श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड अर्धशतक से भारत ने दिया 159 रन का लक्ष्य। इंग्लैंड के साथ T20 में भी नहीं चले वैभव सूर्यवंशी। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी फिर से गाने की।

0: और दोस्तों, अब यहाँ एक छोटा सा अंतराल। अंतराल में प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं वो सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड।

0: विज्ञापन अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च बड़ी पहुंच।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम FM 107.2 MHz पर अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इससे जुड़ी दो खबरें हैं। पहली जो खबर है दोस्तों वो थोड़ी चिंता करने वाली है, खतरे की घंटी है और दूसरी खबर में राहत है। तो पहले चिंता वाली बात करते हैं। चिंता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जताई है कि 92% लोग कभी ना कभी कैंसर से होंगे प्रभावित, कि लोग अपने जीवन में कम एक बार कैंसर के असर का सामना करेंगे। इनमें से हर 5 में एक व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से जुड़ा जो अनुभव है सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं है। गरीब और अमीर देशों के बीच इलाज, जांच और दवाओं की उपलब्धता में बड़ा अंतर है। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, लेकिन खबर यह कहती है कि कैंसर की रोकथाम के लिए तंबाकू को ना कहें, टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों में प्रगति हो, वैश्विक स्तर पर तंबाकू के इस्तेमाल में 27% की कमी तो आई है और 82% देशों ने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना बनाई है। इसके बावजूद इन कोशिशों का असर लोगों की जान बचाने के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, तो इसके लिए जो है काम करना होगा। और ये भी कहा है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, खान पान ठीक रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और जंक फूड से बचें तो इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ये रिपोर्ट का दावा है WHO की। और अब करते हैं राहत भरी बात, ये डायबिटीज मरीजों के लिए है। भारत में बेसल इंसुलिन लॉन्च हुई है। रोज नहीं, साल में केवल 92 इंजेक्शन लेने होंगे। डायबिटीज मरीजों को हफ्ते में एक ही बार लेना होगा इंसुलिन, केवल 52 इंजेक्शंस लेने होंगे। डायबिटीज मरीजों के लिए राहत की खबर है ये। डेनमार्क की दवा कंपनी ने भारत में पहली बेसल इंसुलिन जो लॉन्च की है, उसका दावा है कि इसे हफ्ते में एक बार ही लगाना होगा। ये टाइप 1 और टाइप 2 के जो मरीज हैं, व्यसक, उनके लिए कारगर है। इससे रोज इंसुलिन इंजेक्शन लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। ये है राहत भरी खबर। खबर के बाद ये गाना।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्वागत है दोस्तों आज का अखबार प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का। बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। पंजाब से जुड़ी खबरों में पंजाब के एडिशनल SHO महिला साथी संघ काबू किए गए हैं, 300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है।

पटियाला से खबर है। पटियाला की पॉश ऑफिसर कॉलोनी में पूरे परिवार ने खाया जहर। पिता बेटी की मौत, माँ बेटा जिंदगी की जंग लड़ रहे। आर्थिक तंगी की आशंका जताई जा रही है। पंजाब कांग्रेस की बात करें तो हाई कमान से टकराव नहीं चाहते नाराज कांग्रेसी नेता। चन्नी गुट के नेता बोले, ये एक्सपेरिमेंट का समय नहीं। 852 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों का पूरा किया निर्माण पंजाब में। SIR 11 से 12 जुलाई को पोलिंग बूथ्स पर लगेंगे विशेष कैंप्स। और पंजाब में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है। अब चलते हैं हरियाणा। हरियाणा प्रदेश के 287 गुमनाम INA सेनानियों की पहचान का रास्ता खुला। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026, तबादलों की डिजिटल एंट्री, पोस्टिंग अब HRMS रिकॉर्ड से होगी तय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मिशन ओलंपिक्स 2036 के लिए तैयार करेंगे चैंपियन। हरियाणा में अब 600 मेधावियों को मिलेगी IIT नीट की निशुल्क कोचिंग। यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए 19 नई शोधन परियोजनाएं, 580 MLD बढ़ेगी क्षमता। अब हरियाणा के स्कूलों की आवाज सीधे CM तक। 19 जुलाई को पहली बार करेंगे SMC से संवाद, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के साथ संवाद। अब चलते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल में रद्द हुई भर्तियों की फीस लौटाएगी

0: हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई औद्योगिक नीति से व्यापार में सुगमता को मिलेगा प्रोत्साहन। चैल में चला वन महोत्सव सप्ताह, पौधारोपण अभियान। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति का 21वां राज्य सम्मेलन सोलन में। स्कूबी और पुट्टी का इंडियन नेशनल केनल क्लब में पंजीकरण। लुप्त होती गद्दी कुत्ते की नस्ल के संरक्षण को बड़ी कामयाबी। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। अखबारों में लिखा है कि दिन भर बारिश, ट्राई सिटी में हर तरफ जाम, थमा रहा शहर। शहर में किसानों का शक्ति प्रदर्शन आज। सेक्टर 34 में धरने के बाद मटका चौक तक करेंगे रोष मार्च। पिंजौर गार्डन में आज से सजेगा मैंगो मेला। चंडीगढ़ देश का पहला शहर बनेगा जहां प्रशासन के हर कर्मचारी अधिकारी के लिए बनेगा बस पास। अखबार लिखती है कि बाबू से बॉस तक सब बस में होंगे सवार। पंजाब यूनिवर्सिटी के UBS में नए MBA छात्रों का इंडक्शन प्रोग्राम आज। उद्योग जगत के विशेषज्ञ साझा करेंगे अपने अपने अनुभव। और एशियन रिले से पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा कायाकल्प। मनीमाजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप। स्मार्ट क्लासरूम में चंडीगढ़ अव्वल, 100% सरकारी स्कूल डिजिटल सुविधा से लैस। मनसा देवी में श्रद्धा के साथ आधुनिक सुविधाओं का संगम। श्रद्धालुओं को मिलेगी एस्केलेटर, मंदिर को मिलेगा दिव्य स्वरूप। PGI सारंगपुर मार्ग पर 80 करोड़ से बनने वाले फ्लाईओवर का एस्टीमेट तैयार हो गया है। पढ़ाई में अव्वल विद्यार्थियों को मिलेगा 2 लाख का इनाम। रॉक गार्डन के सामने लगेंगे ग्रास पेवर, 2 महीने में होगा ये काम पूरा। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। अब आज का कार्यक्रम, आज का अखबार समाप्त करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का भी ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार, हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ASEAN में परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान

0: नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खमेनी को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खमेनी ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयातुल्लाह अली खमेनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन

0: लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: और अब सुनिए अगला कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
3: हेलो
2: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो चंडीगढ़।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और इस प्रोग्राम में आज एक बार फिर आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे और आज बात करेंगे बारिश की, क्योंकि देखिए हमारे देश में तरह तरह के मौसम हैं और बारिशों का मौसम तो सबको लुभाता है, इसका इंतज़ार रहता है। हालांकि इस मौसम में बारिश जो है वो थोड़ी जितनी पड़नी उतनी पड़नी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा बारिश से नुकसान भी होता है, जानमाल को क्षति पहुंचती है। तो ऐसे में बारिश अगर सबके लिए सुहानी हो तो क्या बात है, लेकिन बारिश का मौसम अपने आप में बहुत ही लुभावना होता है, सुहावना होता है। लेकिन इस मौसम से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना होता है अपनी दिनचर्या में। आप भी महसूस करते होंगे। बस आज इस ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर हम आपके साथ हैं, चर्चा करेंगे, कुछ आप कहेंगे कुछ हम कहेंगे और इस प्रोग्राम का कारवां हम तय करेंगे। तो आज जो टॉपिक हमने चुना है वो चुना है दोस्तों कि धीमी रफ्तार अपनाइए, बारिश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाइए। तो इससे आपका क्या अभिप्राय है, क्या अनुभव है इस मामले में, क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। ये हमारे तीन नंबर्स हैं। इन नंबरों में से किसी एक को डायल करना है और अपने विचार व्यक्त कर लेना है। तो धीमी रफ्तार अपनाइए, बारिश में पैदल चलने वालों की सुरक्षा बढ़ाइए। आइए करते हैं मंथन इस टॉपिक पर। हेलो चंडीगढ़, आते आते फिर लौट गए हमारे दोस्त जो हैं, खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस मौसम में कहीं बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती है, कहीं अपने आप से बाहर हो जाती है और आसपास के लिए मुश्किलें जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे में जब हम अपने वाहन को पानी में लेकर जाते हैं, सड़क पर लेकर जाते हैं, तो कहीं पानी ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो कई बार जो पैदल चलने वाले हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं, पैदल चलने वाले हैं, साइकिल सवार हैं, स्कूटर सवार हैं, तो जाने अनजाने में हमारी गाड़ी की रफ्तार से, हमारी गाड़ी की गति की वजह से पानी जो उछलता है और उन पर जाकर पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम अपनी रफ्तार को काबू रखें, थोड़े सजग रहें, तो हम भी पानी में से आराम से निकल जाएंगे और पानी जो है वो उछलेगा नहीं और जो ये सड़क का पानी है वो किसी पर गिरेगा नहीं। तो धीमी रफ्तार हमें अपनानी है। आज हमारा ये टॉपिक है कि धीमी रफ्तार अपनाइए, बारिश में पैदल चलने वालों की सुरक्षा बढ़ाइए। और इसके साथ साथ हमें अपने वाहन की गति पर, अपने आप पर नियंत्रण करना होता है, क्योंकि बारिश से भी हमें दो चार होना पड़ता है, आगे हमें प्रॉपर कई बार दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में अगर हमारी रफ्तार धीमी होगी तो हम अपना भी ख्याल रख सकते हैं और गाड़ी को किसी ऐसी इमरजेंसी में कंट्रोल भी कर सकते हैं और जो लोग साथ चल रहे हैं उनकी भी सुरक्षा हम कर सकते हैं।

हेलो चंडीगढ़, नाम बताइए जी, जगह का नाम बताइए। हेलो, जी आज लगता है कि कुछ समस्या आन पड़ी है। कॉल्स तो बहुत आ रही हैं लेकिन बात नहीं हो रही। तो कोई बात नहीं, बात नहीं हो रही तो इस मौसम का थोड़ा आनंद लेते हैं, भीगा हुआ एक गाना सुनते हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में हमारा टॉपिक है कि धीमी रफ्तार अपनाइए, बारिश में सड़क पर चल रहे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाइए। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: तो दोस्तों होता क्या है असल में कि पानी की वजह से जो सड़कें हैं, शहर की तमाम सड़कें, वो गीली हो जाती हैं। सही, जाहिर सी बात है कि बारिश पड़ेगी, पानी पड़ेगा तो सड़कें गीली हो जाएंगी। अब गीली सड़कों पर टायरों की जो पकड़ होती है, गाड़ी के जो टायर होते हैं उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि ब्रेकिंग जो है उसकी दूरी बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कंट्रोल थोड़ा कम लगता है, तो इसी वजह से होता है कि पानी की वजह से गीली सड़कों पर जो टायर्स हैं उनकी पकड़ कमज़ोर होती है और मोड़ लेते समय फिसलने या घूमने की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है।

और ऐसी स्थिति में गाड़ी को तेज चलाने वाले बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं, तो इस लापरवाही से हमें बचना है। इसीलिए जो भी गति से आप गाड़ी चलाते हैं हर रोज, बारिशों के मौसम में उस गति से थोड़ा कम चलाइए। एक दो मिनट लेट पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन धीमी रफ्तार से आप भी सही रहेंगे और सड़क पर जो और लोग चल रहे हैं उनको भी पूरी सुरक्षा मिलेगी। यानी सबका सफर जो है वो इस मौसम में, जिसमें बहुत सारी चुनौती होती है, मूसलाधार बारिश हो रही हो, भारी बारिश में वो भी अपने मंजिल तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक यही है कि धीमी रफ्तार अपनाइए और बारिश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाइए। आज फोन कॉल्स तो आ रही हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही है, फिर भी नंबर्स एक बार फिर से बता देते हैं, 2660615, 2660617 और 2660619। ये है हमारे नंबर्स, इनमें से किसी एक नंबर को डायल कीजिए और हमसे बात कर लीजिए। बारिशों के इस मौसम में गाने भी बहुत ही कमाल के हैं और बारिश के इस मौसम को बड़ी खूबसूरती से गीतकारों ने, गजल गायकों ने पिरोया है, कमाल है। तो चलिए पंकज उधास की आवाज़ में ये गजल आपको सुनवाते हैं, फिर मिलते हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में, हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में धीमी रफ्तार अपनाइए, बारिश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाइए, ये है हमारा आज का टॉपिक।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से
0: जी। तो राकेश जी, जब पहाड़ों पर बारिश होती है वहाँ तो और भी मुश्किलें हो जाती हैं।
1: जी जी जी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हिमाचल में कोटखाई में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है
0: जी।
1: तो ऐसे में तो है सावधानी तो बरतनी मुश्किल है, अभी भी हमारे बारिश है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अगर आप पहाड़ों पे आप सफर कर रहे हैं तो पैदल चलने वालों को यात्रा मतलब देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है धीमी रफ्तार हमें पकड़नी चाहिए, क्योंकि खासकर पहाड़ी क्षेत्र के लिए तो बिल्कुल जरूरी है। खासकर जो जैसे कि बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, ट्राले चल रहे हैं, क्योंकि अब सेब का सीजन भी आने वाला है। तो ऐसे मौसम में तो जो है अपनी जो है धीमी रफ्तार हमें बढ़ानी चाहिए, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पैदल चलने वाले भी मजदूर क्या बोलते लाइन पे चल रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शिमला का रास्ता वैसे ही बड़ा खूबसूरत है और खुला चौड़ा रास्ता है, ऐसे में कई बार हम अपनी मस्ती में हो जाते हैं तो गति का पता नहीं चलता है ना।
1: चलता जी जी जी जी।
0: लेकिन ऐसे मौसम में, बारिशों के मौसम में हमें बहुत सतर्क रहना है।
1: जी जी जी, तो सतर्क रहना है। कई बार क्या करते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं, कई बार अपनी मस्ती में चल रहते हैं और साथ में जो है म्यूजिक चलाए रहते हैं, क्योंकि कई बार हॉर्न बजाते हैं कि पीछे से कोई पैदल मतलब कोई गाड़ी आ रही, कोई पैदल व्यक्ति आ रहे, तो क्या कहते हैं फुल आवाज में म्यूजिक चला देते, तो वो म्यूजिक में मस्तर तत्पुर को पीछे से पता नहीं चलता कि पीछे क्या हो रहा है।
0: क्योंकि बारिशों के मौसम में एक तो पहाड़ पे आप गाड़ी चला रहे हैं, ऊपर से जो बारिश की बूंदों की वजह से जो हमारी विंड स्क्रीन है उस पर नजर कम हो जाती है, दिखाई नहीं देता, बार बार उसे साफ करना पड़ता है, वाइपर की भी अपनी लिमिट होती है, तो ऐसे में नजर कम होती है। ऐसे में मान लीजिए अगर हम 50 की रफ्तार से चला रहे हैं तो हमें 40-30-40 के बीच में गाड़ी को कर लेना चाहिए,
1: कर देना। जी जी जी,
0: क्योंकि पहाड़ों पे लिखा रहता है कि कभी ना पहुंचने से देर भली। तो देर जो चाहे हो जाए लेकिन जी, जान सुरक्षित रहे हमारी भी और सड़क पर बाकी यात्रियों की।
1: अनिल जी, सबसे बड़ी बात ये, अगर आपको मानो कि समय पे पहुंचना है तो आप मानो कि जैसे कि मानो कि आपका 9 बजे का समय है, क्या मैंने 9 बजे वहाँ पहुंचना है, तो 1 घंटा पहले एक्स्ट्रा चले जाओ ताकि आप समय पे पहुंच जाए। लेकिन ये कई लोग क्या करते हैं कि चलो अभी टाइम बहुत है, जब देर हो जाती कई बार गाड़ी को तेज दौड़ा लेती है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं जाना है, कहीं मानो कि आपको समय पहुंचना है, तो इसमें एक ही भी है कि आप समय से पहले क्या बोलते अपनी तैयारी कर लो, बस पहुंच जाएंगे आराम से समय से।
0: जी बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और ऐसे मौसम में सड़क पर फिसलन बहुत हो जाती है
1: जी,
0: स्लिपरी हो जाती है
1: जी,
0: आप
1: जी,
0: ब्रेक लगाएंगे उससे दुगनी रफ्तार से आपकी गाड़ी पलटेगी या जाएगी। ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो कभी, हम तो दुआएं करते हैं कि सबका सफर जो है वो सुरक्षित रहे, लेकिन मौसम के मुताबिक अपने आप को ढालना और उस मौसम के प्रति हमें किन सावधानियों का ख्याल रखना है, इन तमाम बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए।

0: बोलना चाहिए जी जी जी।
1: तो हमें अच्छा लगता है आप भी भूलते नहीं हैं हमें फोन करने के लिए।
0: बिल्कुल। थोड़ी देर में 10:30 बजे मैं नजीबाबाद पे जाने वाला हूँ, तो देखता हूँ जरा वहाँ क्या बोलते हैं। तो जी आप प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा लगा बात करके,
1: शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
1: जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: सूरज बात कर रहा हूँ।
1: सूरज जी ठियोग
2: जी सर।
1: हाँ सूरज जी, आज आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है।
2: एक्चुअली सर मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, तब आवाज पे शुरू हो रहा है।
1: बस में
2: जी सर।
1: कहाँ जा रहे हैं?
2: शिमला से ठियोग आ रहा हूँ।
1: शिमला से ठियोग आ रहा हूँ। तो कैसा मौसम है, पूरे रास्ते भर में बारिश हो रही है कि
2: भयंकर बारिश है सर? लगी
1: भयंकर बारिश है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे में तो भाई हम बस चालकों को भी सलाम करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बस को पहाड़ से लेके जाना, हर मोड़ को कवर करना और चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है बस चालक के लिए। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी यात्रियों की। जी जी जी। तो कैसा सफर है आपका?
2: सर बहुत अच्छा चल रहा, मतलब चल रहा है, बार बारिश हो रही है, विंडो सीट है आपकी, आपके प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे जब हम, आप तो अब बस में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, जब आप अपनी गाड़ी से कहीं जाते हैं ऐसे मौसम में, तो क्या ख्याल रखते हैं आप?
2: देखो सर, जैसे हम हाईवे वगैरह पर कभी पैदल चलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, कई गाड़ी वाले सोचते हैं कि मतलब कई सड़क में गड्ढा गुड्ढा पड़ा हुआ है, तो उसमें मतलब आपको पता ही है साथ में गड्ढे पानी से भर जाते हैं
1: जी।
2: तो क्या बोलते हैं, कई ड्राइवर क्या करते हैं, मतलब उस गड्ढे के ऊपर इतनी तेजी से गाड़ी लेकर चलते हैं, मतलब जैसे अगर कोई साइड में चल रहा है ना, वो बढ़िया से मतलब तैयार होकर कितनी बार घूमने निकला है, ऑफिस के लिए निकला है, आदमी के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं।
1: बिल्कुल होते हैं, और बड़ा मूड खराब होता है।
2: मेरे साथ सर दो एक डेढ़ एक साल का लेने के साथ हुआ है। क्या बोलते हैं, लोग में क्या बोलते हैं, बार शॉपिंग करने गया ना, सामान सामान लेने गया, क्या बोलते हैं, मैं चला हाईवे के पास से, एक छोटी छोटी गाड़ी पता नहीं क्या था, जो भी था वो सारे कपड़े साफ कर
1: देखिए। इस मौसम में अगर जब आप अपनी गाड़ी को रफ्तार देंगे, एक तो हादसे का डर रह सकता है, दूसरी सबसे हाँ विजिबिलिटी कमजोर हो जाती है। तो अगर धीमी रफ्तार होगी तो एक तो अगर पानी में आपकी गाड़ी आ गई है तो पानी से जो छींटे दूसरे यात्रियों पर नहीं पड़ेंगे,
2: गाड़ी से अगर पानी तो कम कर।
1: और ये जो बातें हैं, शहर में इनका खासा ख्याल रखना पड़ता है।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल। शहर में
1: तो केवल पैदल चलने वाले नहीं है, साइकिल वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, स्कूटर वाले हैं, बाइक वाले हैं, तो गाड़ी को आराम से पानी से निकालना चाहिए ताकि पानी उछले ना।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: पानी उछल के जब किसी पर पड़ता है तो यकीन मानिए बहुत बुरा लगता है,
2: बहुत बुरा लगता है, अपने खराब हो जाते हैं
1: जी। तो सूरज जी आपका धन्यवाद करते हैं बात के लिए।
3: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: वेलकम बैक दोस्तों, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आप विविध भारती चंडीगढ़ से सुन रहे हैं, आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुन रहे हैं, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर सुन रहे हैं। धीमी रफ्तार अपनाइए, बारिश में पैदल चलने वालों की सुरक्षा बढ़ाइए। पैदल चलने वाले भी हैं, साइकिल चलाने वाले भी हैं, रिक्शा, रेहड़ी, बाइक, स्कूटर वाले हैं, इन सब का ख्याल हमें रखना है। तो इसके बारे में आप अपने विचार हमसे साझे कर रहे हैं। एक और श्रोता ऑनलाइन है। हेलो चंडीगढ़ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।

0: बताइए। ये भी आते आते लौट गए हैं। फिलहाल एक प्यारा सा गाना लो। गाने की बात हो गई और हमारे श्रोता चले आए, तो पहले इनसे बात करते हैं। हेलो चंडीगढ़
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: जी। नमस्कार, वेलकम। नाम बताइए, जगह का नाम
1: सर, मैं
0: बताइए।
1: प्रदीप बोल रहा हूँ, संकट मोचन शिमला से।
0: जी प्रदीप जी, क्या हाल है?
1: ठीक है सर, आप सुनाइए।
0: जी तो यहाँ भी बारिश हो रही?
1: सर 2 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है यहाँ पे तो।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: तो मानसून ने अब चारों ओर से हमें घेर लिया है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: जहां
1: बिल्कुल।
0: जहां जहां जहां नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच गया।
1: जी, अब तो पूरे अपने उसमें है, फुल स्विंग में है अब
0: जी
1: तो।
0: फुल स्पीड में है, कहीं कहीं प्रचंड रूप में भी है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी
0: चलिए, बारिश बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन हम
1: जी जी
0: दुआएं
1: जी
0: ये करते हैं, हमेशा कामना करेंगे कि बारिश से किसी का नुकसान ना हो।
1: हाँ बिल्कुल सर,
0: जब
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नुकसान
1: सर।
0: होता है तो बहुत दर्द होता है।
1: जी जी जी
0: कई
1: जी
0: बार
1: जी
0: ये
1: जी जी
0: नुकसान प्राकृतिक आपदा की वजह से हो जाता है, कई
1: जी
0: बार
1: जी
0: ये
1: जी
0: नुकसान हमारी लापरवाही से होता है। जैसे हम सड़क पर ऐसे मौसम में गाड़ी उसी मस्ती में चलाते हैं जैसे आम दिनों में चलाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आप
1: और
0: क्या
1: हमें
0: कहना चाहेंगे कि जब सड़क गीली हो, सड़क पर पानी हो, बारिश के मौसम में आपको गाड़ी लेकर बाहर जाना हो, तो किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्या
1: सर,
0: गति होनी
1: बरसात के दिनों
0: चाहिए?
1: में तो हमें इसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तो फिसलन ज्यादा होती है सर,
0: जी
1: और ये जो आपको विजिबिलिटी ये भी बहुत कम होती है सर।
0: जी बिल्कुल होती है।
1: तो उसपे ऐसा है कि अगर हम मतलब स्पीड में चलते हैं, एक तो वो अपने आप को भी उसमें खतरे में डालते हैं हम, और जो लोग पैदल चल रहे होते हैं उनको भी सर हम मुश्किल में डाल देते हैं।
0: क्योंकि आपने देखा होगा दाएं
1: जी
0: बाएं भी कम नजर आता है।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हमारा बारिश के मौसम में हम एक अपना अनुमान लेकर चलते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: और अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसलिए अगर नियंत्रण में होगा वाहन
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: तो अनुमान सही निकल जाएगा।
1: बिल्कुल सर, सही बात है। और
0: तो
1: फिर दूसरा
0: प्रदीप जी,
1: सर,
0: प्रदीप जी आप भी गाड़ी चलाते होंगे ऐसे मौसम में, है
1: जी, सर,
0: ना?
1: जी
0: तो
1: सर।
0: आप क्या ख्याल रखते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं जब निकलते हैं?
1: सर हम तो ये देखते हैं कि एक तो मतलब थोड़ा लिमिट स्पीड में चला जाए,
0: हाँ
1: और जहां पे गड्ढे वगैरह होते हैं वहां पे थोड़ा ध्यान से चल जाए, क्योंकि ना वो आजकल सर दिखता नहीं है कि ये गड्ढा है कि क्या है।
0: हाँ वहां भी आपको अपना अनुभव जो है वो आपका काम आता है।
1: बिल्कुल सर। फिर दूसरे सर बात ऐसी है कि आजकल
0: हाँ
1: हमारे को ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि बारिश में ये जमीन बिल्कुल नरम हो जाती है, तो उससे स्लाइडिंग का भी डर होता है और ऊपर से पेड़ों का भी डर होता है गिरने का।
0: जी जी जी
1: तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऊपर से कुछ मलबा वगैरह तो नहीं कुछ आ रहा है, या कोई पेड़ तो नहीं ऐसा गिरने वाला या कुछ ऐसा है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख के हमारे को सर अपना वाहन चलाना पड़ता है।
0: जी। तो देखिए, इस मौसम में मिट्टी का नरम होना,
1: जी
0: ऊपर
1: जी
0: से भारी वर्षा का हो जाना,
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर,
0: अनुमान से भी ज्यादा हो जाना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: किसी
1: बिल्कुल
0: न
1: बिल्कुल
0: किसी
1: बिल्कुल।
0: हादसे का डर रहता है। अभी पुणे में आपने देखा कि ऐसा ही एक
1: हाँ
0: हादसा
1: जी,
0: हुआ कि
1: बहुत सर, बहुत बहुत।
0: कचरे
1: हाँ
0: का पहाड़ जो है
1: हाँ जी,
0: वो बिल्डिंग के ऊपर गिर गया।
1: हाँ देखो सर, हाँ
0: हालांकि वहां रेस्क्यू टीम जो है वो तुरंत पहुंच गई
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और जो
1: सर,
0: बचाव कार्य था वो शुरू हो गया,
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: लेकिन
1: जी,
0: यहां कई मामलों में हमारा बस नहीं चलता।
1: हाँ ये तो बात है सर, ये
0: लेकिन
1: कुदरत
0: जहां
1: का भी
0: बस
1: है।
0: चलता है वहां हम लापरवाह क्यों हो जाते हैं? तो
1: बिल्कुल
0: आपने
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छी बात बताई कि आप
1: बिल्कुल
0: भी
1: सर,
0: अपनी गाड़ी की रफ्तार जो है वो धीमी रखते हैं।
1: जी सर, जी सर, जी सर,
0: तो ऐसे मौसम में आनंद लेने का एक ही तरीका है,
1: हाँ
0: एक ही
1: जी, हाँ जी,
0: जरिया है कि हम थोड़ा संभल कर
1: हाँ, खुद
0: सतर्कता
1: भी
0: से चलें।
1: सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे
0: हाँ
1: हम।
0: चलिए, इस मौसम में थोड़ा भीग लेते हैं, बहुत देर हो गई बातें
1: ठीक है
0: करते
1: सर,
0: हुए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: वेलकम बैक दोस्तों लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम फिर आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं और टॉपिक है हमारा बारिशों के मौसम से जुड़ा हुआ कि धीमी रफ्तार अपनाइए बारिश में पैदा

0: दिल जो चलने वाले हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाइए। एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, सड़क पर चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, और ख़ास तौर से बारिशों के इस मौसम में। अब जो एक्सपर्ट हैं वो इस मामले में ये कहते हैं कि लंबे समय तक सूखे के बाद अचानक हुई भारी बारिश से सड़क की सतह जो है वो केवल गीली ही नहीं होती, बल्कि वाहनों से निकला तेल, टायर का रबर और डीजल इंजन से निकले कण जो सड़क की सतह पर जमा हो जाते हैं समय के साथ साथ, बारिश के पानी के साथ मिलकर एक बेहद फिसलन भरी सतह बना देते हैं, जिससे आपकी ब्रेकिंग दूरी जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है। तो ये है एक रीजन, इसीलिए हमें अपनी रफ्तार को धीमे रखना चाहिए। आमतौर से हम ये भूल जाते हैं। और देखिए, सड़क में पानी अगर है, हो सकता है कि बारिश की वजह से कहीं गड्ढा हो गया हो, तो पानी वहां पे है, आपको नजर तो नहीं आएगा गड्ढा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की गति कंट्रोल में होगी, धीमी होगी, तो उस गड्ढे में अगर टायर जाएगा भी तो वो नुकसान नहीं होगा, ना गड्ढे को ना आपकी गाड़ी को। दुआएं तो हम ये ही करते हैं कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन बचाव में ही बचाव है, सावधानी है ये बारिशों में। तो सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ी को चलाइए, धीमी गति से चलाइए, यही हमारा कहना है। अब हमारे अगले श्रोता क्या कहना चाहते हैं वो सुन लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, वेलकम, नाम बताइए।
1: परमजीत सिंह वधवा बोल रहा हूँ जी, परवानू से।
0: हाँ जी वधवा जी, क्या हाल चाल है, बहुत दिनों के बाद आया।
1: जी जी जी, और सब ठीक है जी?
0: बढ़िया जी बढ़िया। परवानू में भी बारिश चल रही होगी?
1: हाँ वहाँ बारिश ज्यादा है जी, चंडीगढ़ बारिश कम है, वहाँ तो कल से चल रही है जी सुबह से।
0: जी तो
1: सफर काफा टॉपिक लिए सर, इन टच सभी के साथ, सभी के जीवन में ये पल आते हैं
0: जी,
1: और सभी को इस हिसाब से चलना चाहिए ताकि एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे का ध्यान देते हुए हम आगे बढ़े
0: जी।
1: तो और मैं इसमें सिर्फ दो शब्द कहना चाहूंगा जी। एक तो जब हम बारिश के समय में लेके गाड़ी लेके निकलते हैं, तो एक तो अपने वाइपर को चेक कर लें जी, वाइपर अपने प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, अपने टायर्स ठीक है या नहीं ठीक है, उससे सभी ढंग से हमारी स्पीड पे भी फर्क है जी। अगर ये दोनों चीजें ठीक होगी, स्लो भी हम चल सकते हैं और विजिबिलिटी भी ठीक रहेगी, और आगे चलने वाला जो पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियल है, जो पैदल चल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जी। वो अपने घर पे हम भी सेफ पहुंच पाएंगे, वो भी पहुंच पाएंगे
0: जी। बिल्कुल सही। और बधवा जी, आपसे मैं ये जानना चाहता था, ऐसे मौसम में आप बस से जाते हैं या अपनी गाड़ी से जाते हैं?
1: मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ।
0: अच्छा, तो रास्ते भर में क्या आपका अनुभव रहता है ऐसे मौसम में?
1: यही जो आज टॉपिक चला है ना जी, ये बिल्कुल मन में लेके चलता हूँ, और ये मन में होता है कि कहीं पानी आ जाएगा अगर कोई रास्ते में जा रहा है पैदल। एक तो ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर कोई छींटे ना पड़े, अपने आप को स्लो कर लो। ये अक्सर मन में होता है जी, पर कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं सर कि चलते हुए जब चलते हैं हम, कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि वो कई बार गलती से ये काम हो जाता है जी।
0: हाँ जी हाँ जी, ना चाहते
1: पर हाँ, बस उन चीजों को अवॉइड करना है जी, मेन अपनी चीज को, इस चीज को अवॉइड करना है। पर सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं सर कि जिससे प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरा तो कई बार ऐसा हो भी चुका है जी मेरे साथ। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी साइड में खड़ी करके, या तो टॉवल से उसको साफ कर लेता हूँ या माफी मांग लेता हूँ।
0: क्या क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हम आपको सलाम करते हैं
1: मेरे साहब जी, ये सब आप जो गाइड करते हैं ना, ये आप इस पे
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
1: हम अपडेट करते हम, रहते हैं।
0: हम गाइड करने वाले कौन होते हैं, हम तो
1: नहीं, नहीं, सर,
0: कुछ आप कहते हैं कुछ हम कहते हैं।
1: हाँ जी, एक दूसरे से सीखते हैं सर।
0: जी जी जी जी, ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने, इसके एक बार फिर से दोहराइए।
1: ये जो आपस में हम एक दूसरे से बात करते हैं सर, इसी से सीखा जाता है जी।
0: नहीं नहीं, इससे पहले जो आपने कहा कि मैं सॉरी बोल देता हूँ, वो वाली
1: ये बिल्कुल ठीक है जी। अगर हम ये जो दो शब्द है, ये अगर हम प्यार से बोल देंगे ना जी, एक तो उसका भी साथ, उसका भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है आदमी, वो सोचता है कि हाँ इसकी कोई मजबूरी होगी तो ऐसा हुआ है।
0: अच्छा, कई बार वधवा जी आपने देखा होगा कि ना चाहते हुए भी हम ब्रेक नहीं लगा पाते और वो दूसरा बंदा भीग जाता है।
1: बिल्कुल ठीक है जी।
0: और सारा दिन हमारा मूड खराब रहता है कि हमारी वजह से उसके कपड़े खराब हो गए।
1: बिल्कुल ठीक है जी।

0: हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता है पिछली गाड़ी हमारी गाड़ी में आके लगे।
1: बिल्कुल ठीक है जी। तो ये कह रहा हूँ कि सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि ये चीजें अनअवॉइडेबल हो जाती है।
0: तो बारिश के मौसम अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग मौसम है।
1: हाँ, इसे बस इसे देख के चलना चाहिए सर। और जो आपने अभी भी पीछे बात हो रही थी कि स्पीड स्लो रखें जी, ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग पे सर बहुत इफेक्ट आता है, विजिबिलिटी पे बहुत इफेक्ट आता है, वाइपर आपके ठीक होने चाहिए। अगर वाइपर ठीक है तो आपकी विजिबिलिटी भी ठीक होगी, आप डिसीजन ठीक ढंग से ले लेंगे। हाँ, जी
0: अगर भारी बारिश हो जाए, मूसलाधार हो जाए, तो ऐसे में वाइपर भी हाथ खड़े कर देते हैं।
1: तो बस खड़ा कर लो जी, गाड़ी साइड पे खड़ी कर लो 5 मिनट।
0: जी जी जी जी।
1: तो साइड पे
0: अगर कुछ करके, अगर कुछ नहीं समझ आता तो बेटर है कि कहीं पे खड़े हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा
1: सेफ है, अपने परिवार के लिए सेफ है, दूसरे के लिए भी
0: सेफ है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो यही, हमारी इस प्रोग्राम में यही कोशिश है कि अपनी बातों के जरिए तमाम अनुभव जो हैं इस मामले में हमारे श्रोताओं के जो हैं वो सामने आए, वो हमसे शेयर करें और बताएं कि इस मौसम में वो किस तरह से गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अपने आसपास भी देखते होंगे गाड़ी चलाते हुए लोगों को इस मौसम में, तो उनको देखकर क्या लगता है आपको?
1: मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सर, अभी मैं जा रहा था ना तो शीशे बंद थे हमारे, परंतु एक गाड़ी का शीशा खुला था और आगे पानी था बहुत।
0: हाँ।
1: और एक ऐसा लगा कि मेरे को ये बीच में खड्डा भी आया, जब आगे गाड़ी निकली थी तो खड्डे से काफी पानी उछला।
0: हाँ,
1: तो मैंने वहीं पे अपने आप को पहले मेंटेन किया कि नहीं यार, मेरे खड्डा है, मैंने ध्यान देना है। और उधर से गाड़ी भी ऐसी आ गई जिसके शीशे खुले हैं, अगर वो गाड़ी जंप करेगी तो सारे के शीशे पे उसके गाड़ी के अंदर पानी जाएगा।
0: तो पानी नहीं
1: गया था, रिसेंटली आते हुए बात हुई, आपका ट्रैफिक चल रहा था तो बात हुई है जी।
0: तो पानी नहीं ना गया?
1: नहीं, मैंने तो उस क्योंकि आगे गाड़ी थी तो मैंने अपने आप को रोक लिया।
0: क्या बात,
1: शायद
0: क्या
1: तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता क्योंकि गड्ढे का पता नहीं लगना था, पानी भरा हुआ था।
0: यही तो जागरूक नागरिक की निशानी है।
1: जैसे ही पता लगा मैंने गाड़ी स्लो कर ली, मैंने कहा पहले आप निकल जाओ फिर मैं निकल जाऊंगा।
0: वाह वाह वाह, पहले आप।
1: हाँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भदवा जी आपका। आपका सफर हमेशा सुहाना रहे।
1: थैंक यू जी।
0: भीगे भीगे मौसम का आनंद आप उठाते रहें।
1: क्या बात है जी, आप साथ आप म्यूजिक ऐसा दे देते हैं जी, आनंद आता रहता है।
0: चलिए सुनिए फिर एक और गाना सुनिए जी,
1: आप ऐसा नंबर दे देंगे आनंद आ जाएगा।
0: इसी बात पे एक और गाना।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: वेलकम बैक दोस्तों लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम फिर आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट मकान पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान बिजनेस स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो प्रवेश सूचना टेंडर नोटिस स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च बड़ी पहुंच
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: वेलकम बैक दोस्तों हमारे अगले श्रोता ऑनलाइन है हेलो चंडीगढ़।
4: नमस्कार सर
1: जी नमस्कार वेलकम नाम बताइए जगह का नाम बताइए।
4: मैं संजय बोल रहा हूँ सेक्टर 13 चंडीगढ़ से।
1: जी फरमाइए संजय जी।
4: सर ये तो एक अभी सज्जन बोल रहे थे ये समस्या तो है ही कि ब्रेक चाहते हुए भी बाकी ब्रेक लगाओ तो पीछे वाली गाड़ी का बजने का खतरा तो उसमें फिर बंदा डर रहता है। इसमें हेलो
1: जी जी कहिए कहिए।
4: हाँ तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मतलब कि पीछे वाले को सिग्नल हो कि ब्रेक आगे कोई है ब्रेक लगने की जरूरत पड़ सकती है तो धीरे धीरे ब्रेक मैं 5-7 बार दबाता हूँ फिर छोड़ता हूँ दबाता हूँ छोड़ता हूँ ताकि पीछे वाले को सिग्नल हो जाए कि आगे मतलब कि ब्रेक लग सकती है
1: मतलब तो ये कॉन्शियस हो जाता है ये रुकना चाहता है।
4: हाँ रुकना चाहता है तो मैं पहले ऐसे कर देना चाहिए ना एकदम हाँ, से जाए कि
1: वो एक्चुअली हम जो बात कर रहे थे ना कई बार अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है।
4: हाँ जी।
1: अगर आपको सामने पता है कि ऐसा होने वाला कुछ तो आप धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे और पीछे हाँ, वाले को भी पूरी जानकारी हो जाएगी। ऐसे हाँ, में क्या है कि आगे वाले को पीछे वाले को दोनों को पूरी सतर्कता के साथ चलना चाहिए।
4: हाँ जी हाँ जी।
1: और गाड़ी चलाते समय ऐसे मौसम में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
4: इसका तो मैंने ही बीड़ा उठाया था मैंने वो जो ट्रैफिक वाले अलावट साहब थे वो ये चलान तभी शुरू हुए मैंने उनको बोला था ना कि जो मोबाइल रूटीन में भी चलाते हैं ना उनके चलान हो वो अलावट साहब आए थे एक बार तो बड़े साल हो गए इसके
1: जी।
4: तो वो ये पॉइंट मैंने उठाया था क्योंकि गाड़ी हम चलाते तो मोबाइल वाला साइड ही नहीं देता था तो अपने मोबाइल पे लगा रहता है बड़ी
1: क्योंकि बारिश की वजह से गाड़ी के अंदर आप देख नहीं पाते दूसरी कौन बैठा है ना उसे कुछ हाँ। इशारा कर पाते हैं ना अपनी इमरजेंसी हाँ। को बता पाते हैं क्योंकि बारिश के मौसम में विजिबिलिटी जो है शीशों की वो कम हाँ। हो जाती है तो ऐसे हाँ। में एक ही तरीका है कि गाड़ी को धीरे चलाएं बस
4: बिल्कुल।
1: तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी बात करने के लिए। अमूमन आप जब भी इस प्रोग्राम में आते हैं आखिर में पहुंचते हैं। आप ये सोचते हैं कि दूर वालों को पहले समय दिया जाए। चलिए इस मौसम में अपना ख्याल रखते हुए अपने आसपास का ख्याल रखते हुए गाड़ी को धीमी रफ्तार से चलाएं अपना भी ख्याल रखें आसपास का भी ख्याल रखें हम यही चाहते हैं तो ऐसे में मौसम का जो आनंद है वो दुगना हो जाता है।
4: एक पन्नी बात है मतलब जैसे एक फिल्म भी

0: पीसी के ऊपर दोनों एक दूसरे के लिए रिश्ता लेके जा रहे थे, और वो पता नहीं हीरो नंबर वन थी, वो सड़क पे दोनों के आपस में चीटे पड़ गए, तो एंड में जाकर उसकी शादी हुई कहीं जाके।
1: चलिए शुक्रिया जी संजय जी बात करने के लिए।
0: बनी हुई
1: जी, शुक्रिया जी।

0: और दोस्तों, अब आज के इस प्रोग्राम का समय समाप्ति की ओर है। आज के इस प्रोग्राम में हमने टॉपिक लिया है कि धीमी रफ्तार अपनाइए, बारिश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाइए। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिए। अब अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 11 बजे हैं, अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। आज हम बात करते हैं नशे की। नशे के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं। नशा बहुत सी समस्याओं का जड़ है, ये तो हम सब जानते हैं, पर फिर भी आज युवा पीढ़ी नशे में फंसी हुई है। श्रोताओं, आज हम आपको एक नाटक के द्वारा सुनाते हैं कि ऐसे परिवार के बारे में जो नशे के

0: कारण बर्बाद हो गया था।
1: अरे सुनती हो राजू की माँ, राजू के लिए रिश्ता आया है। लड़की अच्छे घर की है और सुशील है।
2: सुनो जी, हमारा बेटा बहुत सुंदर है तो लड़की भी सुंदर होनी चाहिए।
1: हाँ हाँ, लड़की बहुत सुंदर है।
2: फिर ठीक है, एक बार राजू से भी पूछ लेते हैं।
1: अरे जब राजू श्याम को घर आ जाएगा तुम उससे बात कर लेना।
2: अरे आ गया बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो।
3: ठीक है माँ।
2: राजू बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी।
3: कहो माँ, क्या कहना है?
2: बेटा आज तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है और सुशील भी। तुम कहो तो हम लड़की वालों से बात करें।
3: जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ, आप वैसा ही करें। आप मेरा अच्छा बुरा मुझसे अधिक जानती हो, ठीक है?
2: ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, कल बात करेंगे।
1: राजू की माँ, क्या तुमने कल राजू से बात की थी क्या?
2: हाँ जी, मैंने शाम को राजू से बात की थी। वो शादी के लिए तैयार है। अब आप लड़की वालों से बात कर लीजिए।
1: ठीक है, फिर आज मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ।
0: फिर राजू के पिताजी लड़की वालों के घर चले जाते हैं और राजू के रिश्ते की बात करते हैं। वहीं लड़की के पिताजी राजू के पिताजी से पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। राजू के पिताजी बताते हैं कि राजू मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अच्छा कमाता है। फिर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और राजू और लता का रिश्ता पक्का करते हैं। फिर कुछ समय पश्चात राजू और लता की शादी हो जाती है। लता सुबह उठकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है और रसोई में काम करने चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और लता भी अपने परिवार में बहुत खुश थी। कुछ समय के पश्चात लता के ससुर की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधे पर आ गई और राजू परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि वह सब कैसे संभालेगा।
3: लता जल्दी से खाना ला दो, मुझे काम पर भी जाना है।
4: जी खाना तैयार है, खा लीजिए।
2: राजू बेटा ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू आराम से खाना खा ले।
3: पता नहीं कब ठीक होगा माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ।
5: राजू क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो।
3: क्या बताऊँ यार, पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि क्या करूँ।
5: दोस्तों से मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा।
3: चलो ठीक है, शाम को चलते हैं।
4: माँ जी वो अभी घर नहीं आए, काफी देर हो गई है। हर रोज तो 6 बजे तक घर आ जाते हैं।
2: बहू फोन लगा कर तो पूछ वो कहाँ रह गया है।
4: जी माँ जी।
3: हेलो।
4: हेलो जी, आप अभी तक घर नहीं आए, बहुत देर हो गई है, माँ जी भी पूछ रही है।
3: लता माँ को कह दो चिंता ना करे, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ।
4: ठीक है जी।
2: बहू क्या कहा राजू ने, कहाँ पर है वो?
4: माँ जी वो अपने दोस्तों के साथ हैं, जल्दी घर आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। चलिए आप खाना खा लीजिए।
0: फिर कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और लता दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि राजू नशे की हालत में खड़ा है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। यह देख कर लता को बहुत दुख हुआ। वो राजू को चुपके से उसके कमरे में ले गई। यदि माँ जी को इसके नशे के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा।
4: सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल आप नशे की हालत में घर आए, अगर माँ जी देख लेते तो उन्हें कितना बुरा लगता। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए।
3: चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है।
4: जी वो मैं

0: तो बस।
1: मैंने कहा ना चुप रहो, जाओ अपना काम करो और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ।
0: बहू, अरे ओ बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे।
2: जी माँ जी, ये लो माँ जी।
1: लता, लता, अरे कहाँ मर गई? मैंने खाना लाने के लिए कहा था, अब तक क्यों नहीं लेकर आई?
0: जी अभी आई। अरे बहू, ये राजू को क्या हुआ? वो इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहा है?
2: कुछ नहीं माँ जी, आप चाय पीजिए, मैं अभी आई। ये लीजिए खाना खा लीजिए।
1: थू, ये क्या बनाया है? ना इसमें नमक है ना मिर्च। अरे तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? अभी बताता हूँ तुझे।
0: माँ, मत मारिए मुझे, क्यों मार रहे हो?
1: अभी बताता हूँ तुझे।
0: अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, क्यों मार रहा है बहू को? छोड़ इसे, मत मार। क्या हुआ ये तो बता बेटा, क्या किया है इसने?
1: अरे माँ, आप बीच में मत बोलिए, आपने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है, तभी तो ये कोई काम ढंग से नहीं करती ना। आज नहीं छोड़ता तुझे।
0: तू छोड़ इसे और बाहर जा। बहू चुप हो जा, रो मत, मैं समझाऊंगी उसे, अभी वो गुस्से में है ना।
2: माँ जी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि कुछ पूछूं तो मुझे बताते भी नहीं, क्या हुआ है, इतना नाराज क्यों है?
0: कोई बात नहीं बहू, अभी वो गुस्से में है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
3: धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ महीने बाद लता ने एक बेटी को जन्म दिया। लता और उसकी सास बहुत खुश थी, वहीं राजू शराब के नशे में अधिक डूबता चला गया। वह हर रोज शाम को नशे के हालत में घर आता और घर में लड़ाई झगड़े और मारपीट करता। राजू ना तो लता के बारे में सोचता और ना अपनी बेटी के बारे में, बस सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता। धीरे धीरे उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया, घर के हालात बहुत ही खराब हो गए।
0: बेटा राजू, तुमने ये क्या हाल बना लिया है, तुझे ना खुद का होश है और ना ही बच्चे के खाने पीने का, घर में कुछ सामान भी नहीं है।
2: माँ जी, आप किसे कह रही हैं? ये तो शराब के नशे में पड़े रहते हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने पड़ोस की बहन से बात कर ली है, कल से मैं मजदूरी करने के लिए जाया करूँगी, आप अपने और अपने पोती का ध्यान रखना।
1: अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई है?
0: अरे बेटा क्यों चिल्ला रहा है, बहू घर पर नहीं है।
1: घर पर नहीं है? अरे कहाँ मर गई वो?
0: वो आज खेत में मजदूरी करने गई है, शाम को ही घर आएगी।

0: लो माँ जी, आज जो मजदूरी मिली है मैं उससे घर का राशन लेके आई हूँ।
1: ठीक है बहू, अच्छा किया, रसोई में रख दो।
2: आ गई कुलटा, किस यार से मिलने गई थी बता मुझे।
0: ये क्या कह रहे हैं आप, आप होश में तो हैं? कुछ भी कह रहे हो, छोड़िए मुझे।
2: चल निकल मेरे घर से, आज मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, चल निकल।
1: अरे बेटा छोड़ दे बहू को, क्यों मार रहा है, छोड़ दे।
2: माँ तू बीच से हट जा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चल निकल यहाँ से, मेरी बेटी तो मेरे पास ही रहेगी, समझी।
3: फिर लता अपने माता पिता के घर आ जाती और वहीं रहने लगती। लता अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने सिलाई करना सीख लिया और वह अपने गाँव में सिलाई का काम करने लगी और अपने माता पिता की मदद करने लगी। लेकिन लता हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती थी और उदास हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ राजू शराब के नशे में पड़ा रहता था, ना ही उसे अपना होश था और ना ही अपनी माँ और बेटी का। उसकी नशे की लत के कारण वह बहुत ही कमजोर हो गया था। एक दिन राजू को उसके पुराने दोस्त ने, जो उसके साथ कंपनी में काम करता था, नशे के हालत में सड़क पर पड़े हुए देखा और उसे उठाकर घर ले गया।
4: नमस्ते आंटी जी, मैं राजू का दोस्त हूँ, हम दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते थे।
1: नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ, ये कहाँ मिला तुझे, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ बेटा।
4: आंटी जी मैं रास्ते से आ रहा था, राजू मुझे वहीं मिला। क्या हुआ इसे, इसकी ये हालत कैसी हुई और भाभी जी कहाँ है?
1: बेटा क्या बताओ, राजू के पिताजी के जाने के बाद कुछ दिनों बाद राजू ने शराब पीना शुरू कर दी और घर में रोज लड़ाई झगड़े करने लगा, बहू के साथ भी बहुत मारपीट करने लगा और उसे घर से निकाल दिया। मैं क्या करूं बेटा, ये छोटी सी बच्ची भी बिना माँ के पूरा दिन रोती रहती है।
4: आप चिंता ना करो आंटी जी, मैं राजू से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा।
2: अरे श्याम यार, तू यहाँ कैसे और कब आया, और सब ठीक है ना?
4: हाँ यार राजू, मैं तो ठीक हूँ, पर तूने ये क्या हाल बना रखा है, तू शराब पीने लगा, तूने इस शराब के कारण अपनी जिंदगी खराब कर ली है और साथ में अपने परिवार की भी। तेरे इस नशे के कारण तेरा पूरा परिवार परेशान है, पहले तेरा परिवार कितना खुश था, तूने शराब के कारण भाभी जी को भी घर से बाहर निकाल दिया है और तेरी बेटी को बिना माँ के कर दिया। यार राजू तू अपने नहीं, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच।
2: तू ठीक कह रहा है यार, जब से मैं शराब पीने लगा हूँ ना, मेरे परेशानियाँ और बढ़ने लगी है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। लता के साथ भी मैंने बहुत बुरा किया, वो भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मेरी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया यार।
4: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब ठीक हो जाएगा अगर तू चाहे तो।
2: वो कैसे?
4: पहले तो तू इस शराब को छोड़ दे और भाभी को घर ले आ और उससे माफ़ी मांग, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। और कल मैं तेरे लिए कंपनी में बात करूंगा कि तुम्हें वो काम पर रख ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: ठीक है यार श्याम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कल ही तेरी भाभी के घर जाकर उससे माफ़ी भी मांगूंगा और उसे अपने साथ ले आऊँगा। माँ तुम भी मुझे माफ़ कर दो।
3: फिर राजू अगले दिन लता के घर जाता है और माफ़ी मांग और लता को घर आने के लिए कहता है। लता भी राजू को माफ़ करती है और उसके साथ अपने ससुराल आ जाती है। लता को देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। लता अपनी सास के पांव छूती है और अपनी बेटी के गले लगती है। कुछ दिनों बाद राजू को फिर से कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वह काम करने लगता है। वहीं लता भी सिलाई का काम करती है और दोनों मिलकर कर्जदारों का कर्ज चुकाते हैं।
5: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां पोस्ट बॉक्स नंबर 6 नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक #InstaFace। म्यूजिक #InstaFace। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला। म्यूजिक #InstaFace कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं शरीफ बदमाश फिल्म के गीत से। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। इस गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, और इसी गीत को सुनना चाहा है अम्बाला कैंट से ललिता पाल, हुक्मचंद, ईशु, निशु। आप सब ने इस गीत को सुनना चाहा है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव, यहीं से हर्षित शर्मा, सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ठींगरा, नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा, आप सबकी फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं जुदाई फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं लाइव फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का अगला गीत मंजिल फिल्म से है आवाज है किशोर कुमार की इस गीत को सुना चाहा है मुंडी खरड़ से विजय तंवर और ममता तंवर सेक्टर 12 ए पंचकुला से मोहम्मद जाकिर मोहम्मद कादिर मोहम्मद रफीद मोहम्मद नासिर मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अली हुसैन

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का गीत। आवाजें हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की।

दिल तो पागल है। आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और उदित नारायण को। इस गीत को सुना चाहा है पंचकुला सेक्टर 21 से मोहम्मद अनस और मोहम्मद अरहान।

दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, आप सब सुनना चाहते हैं दाग फिल्म का गीत। आवाज है किशोर कुमार की।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। इस गीत को सुनना चाहा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और CT दीवाना ने।

श्री आनंदपुर साहब से पवन कनौजिया, वंदना कनौजिया और गरिमा कनौजिया, गांव नाईवाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, और आप हैं सुखचैन सिंह पवार समौर से, कुतुबपुर सरवासा से निखिल अनमोल, कनक, शिवांश और दिव्या बांसल। आप सबकी फरमाइश पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं बाजी फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।

सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी और चित्रांशु गुलाटी। सेक्टर 67 मोहाली से डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और आप हैं दत्रेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। नाभा जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। और पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मिहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फुकरे फिल्म का गीत। आवाज है सोना महापात्रा की।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
3: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
2: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर

0: ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
1: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

हम आपके लिए लेकर आए हैं दिग्गज गीतकार और शायर असद भोपाली के लिखे कुछ गीत। आपको याद है ना, आज उनका जन्मदिन है। तो आइए यादों की महफिल कार्यक्रम में आज असद भोपाली जी को हम याद करते हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। गीतकार असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण।

लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में असद भोपाली की लिखी ये रचना, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है एक सपेरा एक लुटेरा।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए असद भोपाली का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है हम सब उस्ताद हैं।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था हम सब उस्ताद हैं।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और कमल बारूद की आवाजी। फिल्म का नाम है पारस मणि। असद भोपाली के शब्दों को संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म रूप तेरा मस्ताना का गीत सुनवा रहे हैं। शब्द असद भोपाली के और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की ही आवाज में, फिल्म का नाम श्रीमान फंटूश, रचना असद भोपाली की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म टावर हाउस का गीत सुनवा रहे हैं, रचना असद भोपाली की और संगीत रवि का।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में असित भोपाली का ही लिखा हुआ, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है आया तूफान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म नाग मंदिर का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एक नारी दो रूप का ये गीत।

यह अवस्थी मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम था एक नारी दो रूप। गीतकार थे असद भोपाली। और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको गीतकार असद भोपाली के लिखे कुछ गीत सुनवाए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित किए जाएंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। एक 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। दिन में 2 सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष। कार्यक्रम सदाबहार नगमे प्रसारित होगा 2:30 पर। कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3:00। चार बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है वो पुरानी बेंच, लेखिका हैं सौम्या शर्मा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित होगा शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम अमृतवाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। शाम 7 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम जयमाला। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 प्रहसन सुनिए फोकट चंद।

रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम गीतकार असद भोपाली पर केंद्रित रहेगा।

0: FM 107.9 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9वीं किस्त जारी कर दी है। राज्य की लगभग 9,98,000 महिलाओं और बेटियों के बैंक खातों में 209,59,00,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: साथियों, हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते को बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बात हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10,00,000 के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209,69,00,000 रुपए की राशि पहुँचाई। आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1,832,69,00,000 रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई।
1: इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को खारिज किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के द्वारा आज गूगल, जेमिनी और प्लेसकॉम के सहयोग से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में AI आधारित प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले के शुभारंभ के अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील डिंगरा, विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित देश का पहला AI आधारित रोजगार मेला रोजगार कौशल

0: विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है। ये आयोजन युवाओं और उद्योग जगत के बीच प्रभावी सेतु का कार्य करेगा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रोफेसर सोमनाथ ने कहा कि इस रोजगार मेले में प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ये मंच नौकरी तलाशने वाले युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप अवसर उपलब्ध करवाएगा। वहीं उद्योगों को योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधन प्राप्त करने में सहायता करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिशन ओलंपिक 2036 के लक्ष्य अनुसार खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पदक लाने के लिए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। इस कड़ी में प्रथम चरण में 11 खेल केंद्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। मिशन ओलंपिक को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। बैठक में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र राई खेल विश्वविद्यालय, पलवल का राज्य खेल परिसर, अंबाला कुरुक्षेत्र के खेल परिसर, पंचकुला का TDL खेल परिसर, जीन, गोहाना, यमुनानगर और करनाल की प्राइवेट अकादमी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ओलंपिक 2036 टैलेंट मिशन के तहत राय विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन केंद्रों में 1200 बच्चों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक पदक विजेता कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा 23 अन्य खेल केंद्र भी विकसित किए जाएंगे जिनमें खिलाड़ियों के रहने व खाने की व्यवस्था होगी। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रोहतक कार्यालय की टीम ने हलका पटवारी सुरेश कुमार को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए आवश्यक भूमि दस्तावेज फर्द में चढ़वाने के बदले शिकायतकर्ता किसान से 1,20,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी चंद्र शर्मा तो प्रतिशत खबरां सुनो। पंजाब भर में चल रही विशेष तीव्र सोध SIR तहत घर घर जाके गन्ना फार्म भरने की कार्रवाई प्रगति अधीन है और यह कार्य 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इस प्रक्रिया को होर सुचारू बनाने कल 11 जुलाई ते 12 जुलाई एतवार को सवेरे 8 बजे तो दोपहर 3 बजे तक सूबे भर के सारे पोलिंग बूथों से 2 दिन विशेष कैंप लगाया जा रहा है जिस नाल वोटर अपने गन्ना फार्म भर सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अफसर आनंदिता मित्रा ने सूबे के वोटरों इन कैंपा च सरगर्मी हिस्सा लेने की अपील कर है कि जेकर किसी ने अजे तक अपना गन्ना फार्म नहीं भरया तो तुरंत अपने बूथ लैवल अफसर BLO नाल संपर्क कर इस विशेष कैंप दौरान अपने नजदीकी पोलिंग बूथ ते जान की कहे। 3 अगस्त में प्रकाशित होने वाली खरड़ा वोटर सूची में हरेक वोटर दा शामिल होना यकीनी बनाने नागरिकां दी सरगर्म जनतक भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बूथ लैवल अफसर इस प्रक्रिया च वोटरां दी मदद वास्ते सारे निर्धारित पोलिंग बूथां ते मौजूद रहेंगे। पंजाब के जल स्रोत मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने कल लुधियाना के पिंड ससराली कलोनी विखे सतलुज दरिया के तुसी बन से चल रहे कार्यक्रम का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि बरसात के मौसम में ध्यान रखते हुए सारे काम निर्धारित समय के अंदर उच्च गुणवत्ता मुकम्मल किए जा लोगों की जान माल की सुरक्षा यकीनी बनाया जा सके। श्री गोयल ने दसा कि पिंड ससराली कलोनी विखे जो करीब 3300 फुट बन रुड़ गया उसकी मुड़ उसारी का काम प्रगति अधीन है। इस काम की लागत तकरीबन 11,75,00,000 रुपए है। करीब 2,00,000 क्यूसिक मीटर मिट्टी की वरतों बनाया जा रहा है। मंत्री ने दसिया कि PPMFGA ट्यूब का काम पंजाब अपनी किस्म का पहला प्रोजेक्ट है जो दरिया कंडे की सुरक्षा के हल प्रबंधन लिए आधुनिक जियो सिंथेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों के प्रयोग में एक महत्वपूर्ण काम होगा। मंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति बारे जानकारी हासिल की थी ते मौके ते चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तुसी बन की मजबूती नाल सतलुज दरिया के नाल लगते इलाकों ते पिंडों नूं वड्डी राहत मिलेगी तो बरसात के मौसम दौरान पानी के दबाव नाल होने वाले नुकसान रोकण च भी मदद मिलेगी। श्री गोयल ने अधिकारियों नूं निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों च निर्माण दौरान सुरक्षा मापदंडों की पूरी तरह पालना यकीनी बनाई जाए और जिते भी जरूरत होवे उत्थे वाधू मशीनरी ते मनुखी बल तैनात करके काम विच तेजी लांदी जाए। पंजाब के बागबानी

0: बागबानी खेत्र विच सूबा सरकार वालों हासिल कीतियां महत्वपूर्ण प्राप्तियां संबंधी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कीता। कल चंडीगढ़ विखे उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बागबानी खेतर नूं होर प्रफुल्लित करन ते आधुनिक बनाउण लई तेजी नाल काम कर रही है। श्री भगत ने कहा कि सूबे च बागबानी खेतर नूं प्रफुल्लित करन ते किसानां दी आमदन च वाधा करन दे उद्देश नाल जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी दे सहयोग नाल लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य पंजाब च मौसम दी तब्दीलियां दे अनुकूल ते उच्च मुल वाली बागबानी फसलों नूं उत्साहित करना है। किसानों की आमदन च इस नाल वाधा होगा ते बागबानी खेतर नूं भी रफ्तार मिलेगी। मंत्री ने पंजाब सरकार वालों बागबानी नूं प्रफुल्लित करने के उद्देश नाल वक्ख वक्ख किसान पक्षी योजनावां चलाईयां जा रही ने जिन्हां दे किसानां ते नौजवानों नूं फायदा मिल रहा है। पंजाब के उद्योग ते वणज मंत्री अरुण अरोड़ा ने कल दो अहम पहलकदमियों की शुरुआत की थी। इस लड़ी तहत पहला वड्डा उपराला पंजाब निवेशक सर्कल है जो उच्च संभावी स्टार्टअप्स नूं उद्यम पूंजीपतियां वड्डे उद्योग आगुआं ते इकोसिस्टम समर्थकां नाल जुड़न वास्ते एक समर्पित मंच प्रदान करता है। अते दूजी पहलकदमी है स्टार्टअप पंजाब हब न्यूरॉन 2.0 जो डूंगी तकनीकी इनक्यूबेशन उन्नत हुनर उत्साहित करने ते केंद्रित है। इन्हां दोनों पहलकदमियों का उद्देश्य नवीनता संचालित उद्यमों वास्ते पंजाब नूं भारत के सब तो पसंदीदा स्थानों विचों स्थापित करना है। स्टार्टअप पंजाब वालों मोहाली विखे इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टैक्नोलॉजी विखे करवाए उद्घाटनी समागम च सूचना ते तकनालोजी सेहत संभाल खेतीबाड़ी निर्माण ते डूंगी तकनालोजी समेत खेतरां दे 14 उद्यमों वालों सैशन किए गए। हरमनप्रीत कौर की अगवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान च मेजबान इंग्लैंड खिलाफ इतिहासक एक एक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय मुताबिक दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। यह पहली बार है जो लॉर्ड्स मैदान च महिलाओं का टेस्ट मैच खेलिया जाएगा। इस 4 रोजा टेस्ट मैच लिए रिकॉर्ड 30,000 तो वह ने पहले ही सीटा बुक करवा लिया ने। मौसम विभाग ने अज उत्तराखंड में भारी मीह की चेतावनी जारी की है। अगले 3 से 4 दिनों में हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश की दिल्ली में भी भारी मीह पैण की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही प्रदेशक खबरें खत्म हुई हैं। साडा एक्स हैंडल है @AIRNEWS जलंधर। राष्ट्रीय खबरें का अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर 1:40 नमस्कार।
1: और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मेला फिल्म के गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीतकार हैं मजरूह, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गजब फिल्म का गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: गजब फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था ममता। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थी और संगीतकार थी रोशन। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा कि जब रागों की बात करते हैं, खासकर फिल्म संगीत में, तो शुद्ध राग पूरे गाने में शायद ही बजाया गया होता है, क्योंकि कभी कभी कहानी के भावों को विस्तृत रूप से उभारने के लिए स्वरों में फेरबदल भी की जाती है, यानी मिश्रित रागों की धुनें ज्यादा सुनाई देती है ताकि गीत अपने भाव को अच्छी तरह से दर्शकों के दिल तक पहुंचा सके। कहने का मतलब है कि रहे न रहे महका करेंगे गीत की शुरुआत पहाड़ी के स्वर के साथ हुई, लेकिन अंतरे में कहीं यमन राग नजर आ रहा है जो रोशन जी का सबसे मनपसंद राग था। आज रागों की अच्छी व्याख्या सभी मित्रों ने की है, धन्यवाद सभी मित्रों का। बिल्कुल, हम तो आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, जो हमारे वो श्रोता इस बात को समझ पाएंगे जिन्हें शास्त्रीय रागों का ज्ञान नहीं है या उनमें उनका क्या कहना चाहिए, उत्साह नहीं है या शौक नहीं है या नहीं जानते वो उसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी गीत जो है एक ही राग पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रागों को मिलाकर भी कई बार इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बता भी दिया है कि फिल्म चांदनी चौक के बारे में आपने पूछा था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, तो मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं रोशन साहब। बिल्कुल सही लिखा आपने, और ये गाना स्मृति विश्वास पर फिल्माया गया था। और आपने ये नहीं बताया कि आवाज किसकी थी, गायिका का नाम भी हमें बताइए तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। वहीं आप लिखते हैं कि दरअसल आज के सारे गाने एक राग पर नहीं है बल्कि एक मीटर पर आधारित है, और आपने किसी गाने का जिक्र भी इस सूची में शामिल किया है। आप लिखते हैं कि आपका पसंदीदा राग, यानी कि मेरा पसंदीदा राग है कलावती, बागेश्वरी, शंकरा, देस और मालकोस। अच्छा, ये राग आपको बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं, जो जैसा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन है आज का ये सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन की आंखों से जब इस कार्यक्रम को महसूस करेंगे तो शायद आपको भी सफर अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का हमें इंतजार था और अब वक्त यूं ही बीत जाएगा। सुहाना मौसम है, शुभ दोपहर है, साथ ही आपका कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ।

यानी मेरे साथ मंदाकिनी दीदी के साथ प्रस्तुति सुंदर, कर्ण मधुर, मनमोहक है और हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे अंत तक, ऐसा हम वादा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हमारे यहाँ सचमुच ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बादलों को उड़ाकर ले जा रही हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत।

0: रेटिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हमारी श्रोता ने लिखा है कि दादा बर्मन ने 1951 में फिल्म नौजवान में गीत रचा था ठंडी हवाएं लहरा के आई। लता मंगेशकर की आवाज थी। साहिर साहब के बोल थे। इस गीत के माधुरी से प्रभावित होकर दादा के समकालीन संगीतकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में गीत रचा तेरा दिल कहां है। इसमें आवाज आशा भोसले की है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गायिका आशा भोसले हैं जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन की धुन तो थे ही, लेकिन दादा का गाना संगीतकार मदन मोहन को इतना भाया था कि उन्होंने 1964 में फिल्म आपकी परछाइयां फिल्म में इसका मुखड़ा इस्तेमाल किया। यही है तमन्ना, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया था, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई। संगीतकार रोशन साहब ने इसी धुन को फिर इस्तेमाल किया 1966 की फिल्म ममता में और लता मंगेशकर से गावाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे। अब ये गीत इतनी प्रसिद्धि देखने के बाद पिताजी की आरडी बर्मन ने भी इस धुन को आधार बनाकर कुछ गीत बनाए और 1981 में आशा भोसले का गाया फिल्म नरम गरम का गाना हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जो कि अभी आपने सुनवाया, इसी धुन का एक बार और इस्तेमाल किया गया। और 1983 में फिल्म अगर तुम न होते में भी इसी को फिर से उन्होंने दोहराया। बात और आगे बढ़ी और आपने इसी तरह से बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई से इस बात को रखा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं वाकई इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से गीतों को रचा गया और किस तरह से जब संगीत प्रेमी श्रोता उन्हें सुनते रहे तो उन्हें लगा कि अरे ये उस गाने की जैसा ही गाना है। बस यही आज के कार्यक्रम की असली थीम है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: Life fast mode पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए Switch to SBI Premier Banking जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और

वही जो हमारे श्रोता भी लिख रहे थे कि आगे अगर तुम न होते इस फिल्म में भी इसी बात को दोहराया गया, इसी मीटर को दोहराया गया। किशोर कुमार की आवाज है, गुलशन बावरा की रचना है और पंचम दा की धुन है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था अगर तुम न होते। और मैं हमारी उसी श्रोता की बात को आगे भी रखना चाहूंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रख दी है इस कार्यक्रम के लिए। यूं समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम उनकी लिखी इस इबारत में आ गया है। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि अगर तुम न होते 1983 की फिल्म थी और हमें और जीने की चाहत में होती बात और आगे बढ़ी। और 1985 आर डी बर्मन ने इसी धुन पर बनाए एक और सुपरहिट गाना फिल्म सागर का लिया। और फिर आप लिखते हैं कि आर डी बर्मन के संगीत साम्राज्य के नौ रत्नों में से एक बासु चक्रवर्ती साहब ने भी इस धुन के नोटेशन पे थोड़ा हेर फेर कर 1992 की फिल्म नरगिस में जगजीत सिंह साहब से दो गाने गवाए थे, कहा था जो तुमने और दूसरा था दोनों के दिल है। और दोनों को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि किस तरह से ये गाने आपस में मेल खाते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, अच्छा अब हमारे सवालों के जवाब आप देने लग गए हैं। आप लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मेरी तमन्नाओं की तकरीर और तुम अगर मुझको ना चाहो, ये गीत आपको एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमें शास्त्रीय रागों पर आधारित एक जैसे गीत नहीं चुनने हैं, क्योंकि वही बात कि हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। हाँ, वो क्या महसूस करता है एक श्रोता के तौर पर, एक श्रोता के रूप में, वही काफी है। तो आपको कौन से गीत एक से लगते हैं वही हम जानना चाह रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि ये किस फिल्म का गीत था, बिल्कुल रहे ना रहे हम जैसी धुन, अरे आपने अभी तो सुना था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय थोड़ा कठिन है पर आज गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो भाई सफर थोड़ा कठिन भी तो अच्छा लगता है ना, लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक, हमारे साथ अंत तक चलना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रागों का ज्ञान हो, ऐसा नहीं है, रागों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गाने शास्त्रीय तरीके से गाए जाते हैं वो बहुत पसंद है, जैसे कि झनक झनक तोरी बाजे पाए लिया। अच्छा, ये गीत आपको बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी चौक 1954 की फिल्म, ये गाना भी नौजवान वाले मीटर से ही बंदा है, गीत शैलेंद्र, संगीत रोशन, स्वर आशा भोसले का था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चांदनी चौक के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, संगीतकार रोशन साहब थे, गीतकार शैलेंद्र नहीं थे भाई, मजरू साहब थे और संगीतकार रोशन थे और आवाज आशा भोसले की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे राग शिवरंजनी ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ऐसे कई गाने विविध भारती पर सुने जो एक जैसे हैं पर अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वही काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गिटार के साथ पियानो का प्रिल्यूड राग पहाड़ी है चांदनी चौक, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, एस डी बर्मन के नौजवान के गाने से जबरदस्त शुरुआत हुई और सभी की पसंद का सम्मान किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक और गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम सागर। अब थोड़ा सफर हल्का हुआ ना, कठिन नहीं है ना।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: सबकी खुशबू अलग अलग है, कमाल है हमारे भारतीय संगीत को और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का विषय वस्तु संग ताल मिलाकर श्रोतागण भी सक्रिय हैं और बराबर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद के गीत लिखे हैं कि वो उन्हें एक जैसा लगता है, आज मौसम की मस्ती में या दो बदन प्यार की आग में, इस तरह के गीत उन्हें पसंद आते हैं और वो एक जैसे उन्हें महसूस होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर का विशेष आकर्षण है फिल्म ममता का अमर गीत रहे न रहे हम। संगीतकार रोशन ने इस गीत में राग पहाड़ी के स्वरों का अत्यंत सटीक, संतुलित और सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया। यही कारण है कि यह गीत केवल अपनी मधुर धुन के लिए नहीं बल्कि राग पहाड़ी की आत्मा को सहजता से अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ए मेरे हमसफर ए मेरी जान ने से मिलता जुलता गाना है हसीना जाने जा जाने मन, ये गाने हमें सिमिलर लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गजल तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से, और जॉय मुखर्जी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का की गजल हमको तुम्हारे इश्क ने

ये हमें अच्छे लगते हैं और सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं पर तो बहुत सारे गीत बने हैं और क्या ही अच्छा हो जब आप हवाओं पर कुछ कार्यक्रम पेश करें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने ये बात कुछ अलग तरह की दी है, इसलिए पहले मुझे घर की बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय ऑफिस में पीनी होगी ताकि मेरे दिमाग का केमिकल लोचा एक्टिव हो जाए और मैं सही कमेंट्स लिख सकूं, क्योंकि रागों के मामले में मैं अनाड़ी हूं। मैं एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य वही है जहां प्रतीक्षण नवीनता हो। वास्तव में चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है, क्योंकि इसकी रचना शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के आधार पर होती रही है। संगीत निर्देशकों ने श्रोताओं की रुचि को ऐसे संगीत का सृजन कर छोड़ा है जो कहीं पर पूर्ण शास्त्रीय संगीत में रचे हैं, कुछ उपशास्त्रीय तो कुछ लोक संगीत में, और इनमें कहीं कहीं पर प्रयोग के तौर पर पार्श्व संगीत और गौण धुन का बेहतरीन संयोजन किया गया है। ध्यान रहे कि गौण धुन मुख्य धुन को दबाती नहीं है, बल्कि एक नया संगीतमय रंग और गहराई जोड़कर उसे और आकर्षक बना देती है। कितनी सुंदर और शानदार बात आपने लिखी है। और अब इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यार का तराना। इस गीत के बारे में आपको मालूम था?

आज का ही कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप समझ गए आज के इस कार्यक्रम का मर्म क्या था। जी हाँ, राग पहाड़ी से प्रभावित होकर अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने जो गीत रचे और उसमें अलग अलग शास्त्रीय रागों को पिरो कर एक ही मीटर में जो संगीत हम तक पहुंचाया, उसी को आज आप तक लाना हमारा उद्देश्य था। आपको आज का ही कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आपको ये कठिन सफर आज का कठिन नहीं लगा होगा। मुझे लगता है कि अब सफर के आखिरी सोपान पर हम मिल रहे हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती है यानी सफर से इजाजत। फिर मिलूंगी। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी।

वंदे मातरम, इन शब्दों के प्रचार में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण पूरे देश में चल रही स्वाधीनता की लड़ाई वंदे मातरम शब्दों पर केंद्रित

रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुओं पर भी वंदे मातरम शब्द दिखने लगे। राष्ट्र ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द आ गए और आम लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वाले समाचार पत्र भी इसमें पीछे

भारत की कई भाषाओं में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र या साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाएं निकलने लगीं और इसकी शुरुआत स्वाभाविक रूप से बंगाल में हुई। बंगाल के विभाजन के विरोध में जनमत तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण काम स्वदेशी अखबारों ने किया। युगांतर, अमृत बाजार, संध्या जैसे पत्रों ने अत्यंत कड़े और उग्र शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए हो रहे दमन तथा अत्याचारों का विवरण आम जनता तक पहुंचाया। वंदे मातरम में दश प्रहरण धारिणी यानी 10 शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा का वर्णन करते हुए भारत माता को वाणी विद्या दायिनी भी

0: कहा गया है। उसी सरस्वती की लेखनी इस लड़ाई में एक शस्त्र की तरह उतरी।
1: अमृत बाजार की मोतीलाल घोष और युगांतर की बारिंद्र कुमार घोष उग्र विचारों वाले राष्ट्रभक्त थे। उनके समाचार पत्रों पर पाबंदी और मुकदमे की तलवार हमेशा लटकी रहती थी, फिर भी उन्होंने अपने शब्दों की धार कम नहीं की। वंदे मातरम शब्दों को उन्होंने लोकप्रिय तो किया ही, साथ ही उसके आशय को लोगों के मन में बसाकर उसे आचरण में लाने के लिए दिल से प्रयास भी किए। अप्रैल 1906 के युगांतर के अंक में संपादक लिखते हैं,
0: रक्त में समा चुके स्वतंत्रता के बीज को कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती। आज का धर्म है शहादत, कल का धर्म होगा विजय। शहादत बलिदान आवश्यक है ही, पर वो शेर के सामने बकरी द्वारा किया गया बलिदान ना हो।
1: और उसी 11 नवंबर 1906 के अंक में लिखते हैं,
0: जैसे को तैसा व्यवहार करो, घूसे का प्रहार हो तो लात मारो, तभी तुम्हारा पौरुष दिखेगा। मृत्यु से मत डरो, उस समय होठों पर वंदे मातरम का नारा ही जीवन संगीत बनने दो।
1: अप्रैल के संध्या के अंक में लिखा गया,
0: शांत रहना राष्ट्रीय आत्मा का अपमान है, अपमान का बदला प्रतिशोध लेने से ही होता है।
1: 26 मार्च 1907 को युगांतर के पत्रकार लिखते हैं,
0: धूल में पड़ी फटे चिथड़े पहनी हुई मां को देखो, उसके आंसू कौन पोछेगा? उसके अपमान का बदला लेने सबसे पहले कौन आगे आएगा? कर्तव्य का मार्ग स्पष्ट है, युद्ध निकट आ गया है, विजय मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा? हे वीरों, जल्दी करो, गति दोगुनी करो, मां के वैभव के लिए दान करने आगे आओ। गीता में कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम।
1: संध्या के 15 मई के अंक में छपा ये लेख बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ के एक संवाद से मिलता जुलता है। नवंबर के दैनिक हितवादी के अंक में लिखा गया,
0: युद्ध के नगाड़े बजने दो, मां को रक्त स्नान कराओ, शत्रु का हृदय कांप उठेगा।
1: युगांतर के एक और अंक में प्रखर शब्दों में आह्वान किया गया था,
0: वंदे मातरम की घोषणा ने शत्रु का धैर्य और सामर्थ्य नष्ट कर दिया है। देखो, मां के मुख पर विजय की मुस्कान है, वो हमें अभय दे रही है, दानवों का नाश करने के लिए वो तैयार हो गई है। देशभक्तों, तैयार हो जाओ।

वंदे मातरम ये अखबार तो नाम से ही खुलेआम क्रांतिकारी कार्य का मुखपत्र था। बंग भंग विरोधी आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरह बिपिन चंद्र पाल भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के आग्रह पर बिपिन चंद्र पाल ने नए शुरू हो रहे वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का संपादक पद स्वीकार किया। उस समय अरविंद घोष बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी कर रहे थे। अगस्त 1906 में वे भी कलकत्ता लौट आए और राजनीति में भाग लेने लगे। वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के लिए क्रांतिकारियों के नेता हरिदास हल्दर ने 500 रुपए दिए थे। राजा सुबोध चंद्र मलिक भी नियमित रूप से आर्थिक सहायता करते थे।

0: वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का आदर्श वाक्य था भारत भारतीयों के लिए, परंतु दो ही महीनों में बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम के संचालकों से मतभेद हो गए और उसके बाद श्री अरविंद घोष संपादक बने। संध्या और युगांतर इन दो अखबारों के बाद वंदे मातरम यह पत्र शुरू हुआ और इन दो समाचार पत्रों की तरह ही वंदे मातरम ने भी समाज के मन में बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति पैदा की। श्री अरविंद संपादक बने और वंदे मातरम के लेखन में पैनापन आ गया, एक धार सी आ गई। सरकार की ऐसे अखबारों की सामग्री पर बहुत बारीकी से नजर रहती थी, इसलिए श्री अरविंद इतनी सावधानी से लेख लिखते थे कि कानूनी तौर पर सरकार उन्हें फंसा नहीं सकती थी। फिर भी उस सामग्री में राष्ट्रभक्ति और युवाओं के लिए आवाहन अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया जाता था। वंदे मातरम के इस मिले हुए अस्त्र का सटीक उपयोग कैसे करना है, ये श्री अरविंद ने इस समाचार पत्र के लेखों द्वारा जनता को दिखा दिया था। श्री अरविंद उस समय युवाओं के क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रसिद्ध थे, बड़ौदा के समय में एक उत्तम प्रोफेसर के रूप में विख्यात थे, वे उत्तम कवि भी थे। केसरी के लेखों द्वारा समाज के मन पर हुए प्रभाव को वे जानते थे। तिलक की तरह ही अत्यंत विस्फोटक भाषा में उन्होंने वंदे मातरम में लेख लिखना शुरू किया। केसरी में तिलक के अग्र लेखों की तरह ही श्री अरविंद के वंदे मातरम के लेख भारतीय पत्रकारिता साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। आनंद मठ का पहला अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने शुरू किया था, बाद में उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष ने उसे पूरा किया। वंदे मातरम गीत के श्री अरविंद द्वारा किए गए दो अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध है। ये अनुवाद वंदे मातरम के सर्वोत्तम अनुवादों में गिने जाते हैं। Mother of mine, I bow to thee, rich with thy herring streams, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free, glory of midnight dreams, over thy branches and lordly streams, clad in thy blossoming trees, mother.
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की ये थी 36वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
3: वंदे मातरम सुजला,
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
3: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम,
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है, और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी

0: से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहाँ की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से

0: सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन

0: और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा।

0: आएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम आशिक, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है आरती, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन रोशन की।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम असली नकली। एक

फिल्म रंगोली का गीत सुनिए, इसे आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन, रचना शैलेंद्र की, आर्थुन एस एन त्रिपाठी की।

0: तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता दत्त को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था साहिब बीबी और गुलाम। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगी कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारतें मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फ़ोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हमारे लॉन्ड्री है, बंगाली में है, हमारी लॉन्ड्री खुद की है
0: जी।
1: और यहाँ पे कोयली गाँव में हमारा मकान है
0: जी। जी जी,
1: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी सवा महीने का हुआ है।
0: अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
1: अच्छा, 7 साल बाद में आया अभी।
0: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बताइए सोनिया जी कि बारिश आपको कैसी लगती है? बारिश में आप क्या क्या और चीजें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ

0: बताइए
1: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है।
0: जी, किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
1: ये कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम का ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब बच्चा आ गया छोटा, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा।
0: जी, और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
1: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
0: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
1: पापा में पापा बन गए, मेरे बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
0: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं समा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सोहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान?
1: जी
0: जी क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं?

0: बेटा?
1: हाँ, मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ, उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा।
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की
0: जी,
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा।
1: हम लोग इसमें करते हैं जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं
0: जी,
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं
0: जी। तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं।
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है तो उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी,
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब उनको गिफ्ट मिलता है, और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की
0: जी। और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं,
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले।
0: जी जी जी।
1: फिर उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं।
0: जी, तो फिर
1: नहीं आता है।
0: हाँ जी।
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी
0: जी,
1: उसका माँ बाप नहीं थे तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है आँखियों के झरों के से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बस इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कौन व हवन सामग्री।
1: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
1: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
2: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का
1: जी,
2: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन है।
1: क्या बात है। आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
2: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब
1: जी,
2: टिमटिमा पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
1: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
2: जी, घूमने कहीं चले जाए, और क्या।
1: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए हैं?
2: जी जी।
1: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें तो साझा कीजिए।
2: जी जी, मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ
1: जी,
2: तो साथ में खेले हैं हम लोग
1: जी,
2: पानी में, बारिश में, वहाँ पर
1: जी
2: जी, तो अच्छा लगता था। पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
1: अब ये बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए आपकी पसंद का?
2: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, नीता जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का विवाह फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अमदावाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल करती थी?
1: बारिश में भिगना और पानी में छपछपना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती हैं, ये इस बारे में कुछ बताइए।
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है। मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ
0: जी,
1: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है।
1: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई मैं
0: जी। तो
1: हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
0: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
1: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ।
0: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं दिल अपना और पीत पाई का गाना
0: जी। बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ
0: जी।
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बारिश में घर गंदा ना हो ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी?
1: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे, मेरा गांव सुल्तानपुर है
0: जी।
1: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे,
0: अच्छा,
1: खो खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
1: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
0: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बनी जाता है ना गृहिणी
1: बनी जाता है।
0: जी, जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया, है ना,
1: कुछ भी बना। हाँ,
0: और मान लीजिए सूजी कम है तब
1: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है
0: हलवा। बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी
0: जी,
1: बहू पोते पोती।
0: क्या बात है, भरा पूरा परिवार है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
0: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल का समय हो चला है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कौन व हवन सामग्री।
1: अंतराल हुआ यूं पल में खत्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
2: हेलो सहेली
1: जी, स्वागत है।
2: नमस्ते मंजरी जी।
1: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
2: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
1: और बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
2: एक हाउस वाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
1: प्रतिमा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियाँ हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
2: मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है, इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है
1: जी।
2: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से,
1: हाँ।
2: भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम
1: जी। और
2: उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
1: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद है आपको
2: बारिश में? देखिए पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती
1: हाँ।
2: थी। और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे।
1: सही बात है। और वो अगर
2: घर में पकौड़े और सब्जी ये सब बनेंगे।
1: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए। बढ़िया बढ़िया है ना। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
2: हाँ, तो बस से रात तक।
1: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
2: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार
1: जी जी,
2: उसमें जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात।
2: रामचरित मानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं, बताते हैं
1: जी,
2: स्टोरी
1: जी,
2: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: क्या बात
2: क्योंकि
1: है।
2: वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता है।

0: सही बात है, उसकी
1: ना,
0: विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
0: तो
1: और
0: यार
1: बाकी प्रोग्राम सब भी अच्छे हैं विविध भारती के, तो
0: जी,
1: मैं
0: और
1: सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा।
1: एक्चुअली
0: प्रतिमा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: ये पसंद मेरी मम्मी की है,
0: जी
1: स्वप्न झरे फूल से नीत चुभे शूल से, वो
0: जी
1: है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक। तो प्रतिमा जी, आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से।
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे
0: जी,
1: अभी जाके लगा है आपका कॉल।
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना, आपने कॉल लगाने की कोशिश करी और कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है
0: जी,
1: चारों तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश वहाँ पर भी खूब हो रही है?
1: बहुत हो रही है।
0: तो बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप साझा कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है
0: जी,
1: तो मैं वहाँ पे हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़ी एक पास में जगह थी
0: जी,
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल
0: जी
1: पूरा, और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
0: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में?
1: हाँ जी हाँ, बहुत बातें होती रहती।
0: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या क्या आप

0: सावधानियां रखती है जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
1: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है बहुत ध्यान रखने का।
0: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
1: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शौक बरकरार है, मतलब बचपन की फ्रेंड अभी तक हम लोग सब ग्रुप है
0: जी,
1: तो हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं पर मिलते हैं।
0: क्या
1: कभी
0: बात,
1: कभी कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है।
0: बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
1: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है
0: जी,
1: तो म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ
0: जी,
1: मतलब पूरी फैमिली को हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था
0: जी
1: पहला स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं
0: जी जी जी,
1: तो बहुत खेला है, मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है, वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
0: जी
1: पूरा कॉलेज पूरा वो खेला।
0: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
1: और
0: में।
1: भी अच्छा लगता।
0: तो अंजू जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी।
0: तो अंजू जी आज आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ, पुणे से।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैंने बचपन से आज तक रेडियो ही सुने हैं।
0: क्या बात है, तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सब सारे प्रोग्राम उनको बहुत पसंद है।
0: क्या बात है,
1: माला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाइश, हेलो सहेली
0: जी। तो ये बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा देखना, ये सब चीज, रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला के फैन है?
0: कला के फैन है, क्या बात है जी। कला तो बहुत अनंत होती है,
1: हाँ,
0: उसकी कोई सीमा नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो ये बताइए, हाँ, बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत, हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से।
0: अच्छा।
1: बिना सीखे ही बहुत बनाते थे और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद।
0: क्या बात है,
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है। ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना, अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना
0: जी,
1: यही सब मेरा शौक है।
0: क्या चीज खिलाना पसंद करती है, आपको क्या पसंद है, क्या बनाए?
1: नहीं, खाना हम अच्छा बनाते हैं और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे
0: जी। आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का
0: जी,
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं दिलक मंदिर का ये प्यारा सा गीत।
1: प्यार में सारा आलम हमको बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है और सखी सहेली
0: जी
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें
0: जी,
1: घर पे रहें
0: जी। हाँ। और बारिश में क्या क्या चीजें बनाती हैं?
1: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बारिश आती है सबको पकौड़े याद आ जाते हैं ना। मान लीजिए रसिका जी मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीजें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती हैं कि क्या चीज हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज बन जाए?
1: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े
0: जी,
1: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी।
0: अच्छा,
1: तो और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
0: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
1: परिवार में मेरी सास
0: जी,
1: नंदे
0: जी,
1: और मेरे पति, एक बेटा,
0: भरा पूरा परिवार है। बहुत अच्छा लगा सुन करके। और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
1: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई,
0: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो बहुत
1: हाँ,
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दे, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए। फ़ोन नंबर है 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002-4662, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867-0288, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फ़ोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठ कर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

इसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गई। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हो भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ, वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुक कर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर

मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी। फिर

उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी, कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया। कुछ लोग ताना मारते, लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूब कर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य पुरावशेषों की सफल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुरबस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने के आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों में से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। यह पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मकोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं

दोस्तों अभी आपने सुना लव स्टोरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहरी सफाई की ही तरह अंदरूनी सफाई भी बहुत जरूरी है। इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर जमा विषाक्त और टॉक्सिन्स को बाहर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ और विषमुक्त रह सकते हैं। आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सा प्रणाली में डिटॉक्सिफिकेशन पर विशेष जोर दिया जाता है। हम जो भी कुछ खाते हैं, वो कई प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं के साथ एक समय के बाद अपशिष्ट बनकर शरीर से बाहर आ जाता है। हालांकि इसका कुछ अंश शरीर में शेष रह जाता है, जो धीरे धीरे जमा होकर कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। डिटॉक्सिफाइंग की विधि आपको बीमार से बचाने में मदद करने के साथ शरीर के तमाम अंगों को स्वस्थ और फिट बनाने में सहायक है। आप घर पर ही आसानी से कुछ उपायों को प्रयोग में लाकर शरीर से विषाक्तताओं को कम कर सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में जानते हैं, जिसको सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है रक्त को शुद्ध करना। ये लिवर में रक्त से अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बॉडी डिटॉक्स के दौरान किडनी, फेफड़े, लिम्फैटिक सिस्टम और त्वचा से विषाक्त पदार्थों को भी समाप्त किया जाता है। आमतौर पर शरीर की बाहरी शुद्धि पर तो हम सभी का ध्यान होता है, लेकिन आंतरिक सफाई पर विचार नहीं किया जाता है। ऐसे में ये विषाक्त पदार्थ शरीर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अगर शरीर में हार्मोन संतुलित नहीं रहते हैं तो इससे कई रोगों का जोखिम बढ़ जा सकता है। खासकर महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अनियमित पीरियड्स, PMS, PCOD, PCOS और थायराइड आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हार्मोन्स को संतुलन और पेट को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी है? संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स कई गंभीर रोगों को जन्म दे सकते हैं। बॉडी डिटॉक्स हार्मोन्स को संतुलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि आप शरीर को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं? इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के जरिए आप जानेंगे ये सब टिप्स। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। स्वस्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हम सभी दिन भर खूब पानी पीते रहते हैं तो ये शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे असरदार तरीका हो सकता है। पानी पीते रहने से किडनी के माध्यम से अपशिष्ट उत्पाद आसानी से बाहर आ जाते हैं, जिससे उनके शरीर में जमा होने का जोखिम कम हो जाता है। पानी पीते रहने से शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषण में भी लाभ मिलता है। नींबू को बॉडी डिटॉक्स डाइट का मुख्य हिस्सा माना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो रोग पैदा करने वाले मुक्त कणों से लड़ने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा खट्टे फल का शरीर पर एक क्षारीय प्रभाव होता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के पीएच संतुलन को बेहतर करने में मदद कर सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को लाभ होता है। ऐसे पदार्थ

का अधिक सेवन करें जो आपके पाचन को बेहतर बनाए और पेट को स्वस्थ रखे, साथ ही आपको पेट में गैस और कब्ज से बचाए। अनपचा भोजन शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ावा देता है। आप छाछ, दही, फर्मेंटेड फूड्स जैसे प्रोबायोटिक्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं। सांस संबंधी व्यायाम करने से शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद मिलती है, साथ ही ये आपके फेफड़े को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ये एक्सरसाइज शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना और अपने सिस्टम को साफ करने में मदद करने के लिए दिन की शुरुआत गर्म पानी और नींबू के साथ करना फायदेमंद है। बॉडी डिटॉक्स के लिए उचित आहार भी आवश्यक है। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीजों की मात्रा बढ़ाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। वही फाइबर युक्त चीजें पाचन को ठीक रखने के साथ मलत्याग की प्रक्रिया को आसान बनाती है, जिसके शरीर के अपशिष्टों को आसानी से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, ये लंबे प्रोग्राम मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की

एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीजों की मात्रा बढ़ाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। वही फाइबर युक्त चीजें पाचन को ठीक रखने के साथ मलत्याग की प्रक्रिया को आसान बनाती है, जिसके शरीर के अपशिष्टों को आसानी से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, ये लंबे प्रोग्राम मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। लंबे प्रोग्राम के हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रसारित किए गए सभी प्रोग्राम्स डॉक्टर, विशेषज्ञ व एकेडमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रोग्राम में प्रसारित किए गए तत्वों के सूचनाओं को लंबे प्रोग्राम के पेशेवर यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स द्वारा जांचा परखा गया है। संबंधित प्रोग्राम श्रोताओं की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। लम्हे प्रोग्राम में जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। प्रोग्राम में कही गई संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श ले। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉडी डिटॉक्स के बारे में। आप तो जानते हैं कि अगर खाना पचने में जरा आपको दिक्कत हो रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, इससे जो भी ऐसा खाना बच गया है अपने पेट में वो फर्मेंट होती है और टॉक्सिन्स के रूप में कई प्रकार की बीमारी फैलाती है। तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और आसान तरीका डिटॉक्स का ये भी है दोस्तों कि हम फास्ट करें यानी उपवास रखें। जी हाँ, आपने सही सुना, उपवास रखने से जितने भी विषैली पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। पहले तो लगता है कि उपवास रखना बहुत ही मुश्किल है, पर धीरे धीरे इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप शुरू कर सकते हैं। कुछ घंटों तक आप शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में 24 घंटे, फिर उसका समय धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। पर ज़रूर अपने डॉक्टर से इसकी सलाह मशवरा करने के बाद ही आप जो भी फास्ट करना है, उपवास करना है, ये शुरू कीजिए। और ये बहुत ही आसान तरीका है अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का। तो दोस्तों, फास्टिंग के बहुत अच्छे परिणाम और रिजल्ट्स भी हम देख चुके हैं लोगों में। जितना जल्दी डिटॉक्स बॉडी फास्टिंग में होता है वो न किसी तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए फास्टिंग को अपनाएं। कम से कम हफ्ते में एक बार तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू करके एक पूरा दिन आप फास्ट कीजिए और देखिए आपका ऊर्जा, आपके एनर्जी लेवल्स कितना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
0: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
0: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
0: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्र में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
0: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया। इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
0: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
0: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक AC की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
0: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए।
1: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप

आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी, और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं, जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की,

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर बड़े

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया, सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो, ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा,
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।

0: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही हम वापस लौटना चाहते हैं। सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। हमें भुजाएं चाहिए।
1: मैसिडोनिया चलो,
2: सबर करो साथियों, जब यहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
0: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो आचार्य,
6: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो।
7: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: अरे बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: अरे

0: क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
1: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों

0: देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: आवाजवाणी ने चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦ ਕਿਰਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 योजनाओं के तहत 1582,16,00,000 रुपए हस्तांतरित किए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, डीबीटी प्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के साथ साथ सरकार पर लोगों का भरोसा मजबूत किया। केंद्र सरकार ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

0: से मिली छूट खत्म की। कुरुक्षेत्र में नागरिकों की आधार संबंधी समस्याओं के लिए शहर के सेक्टर 17 में आधार सेवा केंद्र खोला गया और अंबाला जिले में निरक्षर कैदियों को शिक्षित करने की अनूठी पहल शुरू की गई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से राज्य के 50,20,460 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 योजनाओं के तहत 1,582,16,00,000 रुपए सीधे हस्तांतरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34,83,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,121,39,00,000 रुपए की राशि सीधे भेजी गई है। लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजना सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी की गई। इसके तहत 9,98,000 बहनों और बेटियों के बैंक खातों में 209,69,00,000 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं।
1: साथ ही हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते को बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10,00,000 के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209,69,00,000 रुपए की राशि पहुँचाई है। अब तक 1,832,69,00,000 रुपए की राशि बहनों के पहुंचा दी गई।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत आज 3,295 परिवारों को 125,11,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अब तक 77,330 परिवारों को 2,918,42,00,000 रुपए की सहायता जारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाले 5,16,000 महिलाओं के बैंक खातों में मई माह की 18,97,00,000 रुपए की सब्सिडी भी जारी कर दी गई है। अब तक 14,73,000 पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत 320,97,00,000 रुपए की सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,165 पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 107,00,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 827,22,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 76,466 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें 41,260 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि 35,206 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था के जरिए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि डीबीटी प्रणाली ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पर रोक लगाने के साथ साथ लोगों का सरकार पर भरोसा भी मजबूत किया है। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने पारदर्शिता, सुशासन और अंत्योदय के संकल्प के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने की व्यवस्था लागू की है।
2: इसी 1.5 वर्षों के अंदर लगभग जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है या भर्ती हमने कर लिए हैं 50,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है हरियाणा सरकार के अंदर। परंतु वो भी बताएं ना जो झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं। कांग्रेस के समय में क्या था, बेटा पेपर भी नहीं देने जाता, जो पेपर देख रहा था उनके नाम ही नहीं आवा।
0: उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में गरीबों, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के नाम पर केवल वादे किए जबकि वर्तमान सरकार ने उन्हें योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी घोषणाओं और झूठे वादों के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास करती रही है जबकि डबल इंजन सरकार जनता से किए गए प्रत्येक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे

0: बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब लाइसेंस से छूट नहीं मिलेगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। मंत्रालय का कहना है कि इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होगी। कुरुक्षेत्र में नागरिकों की आधार संबंधी समस्याओं के हल के लिए शहर के सेक्टर 17 में आधार सेवा केंद्र शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र के नागरिकों को अब आधार कार्ड से संबंधित कार्यों को करवाने में आसानी होगी।
1: नया आधार केंद्र बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा से युक्त है, जहाँ पे 4 काउंटर है और ये सातों दिन खुला रहेगा। नागरिकों को यहाँ सेंटर पे एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा। बैठने की, पेयजल की आदि सुविधाएं भी बहुत अच्छे से क्रिएट की गई है।
0: उन्होंने कहा कि केंद्र में बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती व शिशु को आधार से संबंधित कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति आधार सेवा केंद्र से संबंधित अपने कार्य के लिए समय ले सकता है। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु की आधार कार्ड से संबंधित सुविधा निःशुल्क रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश में अब तक यमुनानगर, गुरुग्राम, हिसार और अम्बाला में केंद्र खुल चुके हैं। कुरुक्षेत्र के बाद कल सोनीपत में ऐसा केंद्र खोला जाएगा। अम्बाला जिले में जेल पुलिस अधीक्षक सतविंदर गोदारा के सहयोग से जेल में निरक्षर बंदियों को शिक्षित करने की अनूठी पहल शुरू की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम उल्लास योजना नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत जेल में बंद सभी 236 निरक्षर कैदियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन्हें पढ़ाने का जिम्मा जेल में ही बंद 17 शिक्षित कैदियों ने स्वैच्छिक शिक्षक बनकर संभाला है।
2: हम सेंट्रल जेल में गए थे, वहां पर हमने उल्लास कार्यक्रम के तहत 236 जो बिल्कुल निरक्षर वहां पर कैदी थे उनको रजिस्टर किया है उल्लास पोर्टल के ऊपर, और 17 वहां पर हमारे कुछ पढ़े लिखे कैदी थे जिनसे हमने पूछा कि क्या आप इनको पढ़ाने का काम करेंगे, तो उन्होंने स्वेच्छा से वो कार्य स्वीकार किया और उनको हमने वॉलंटियर टीचर के तौर पर उल्लास पोर्टल पर रजिस्टर किया है।
0: अम्बाला जिले में इस अभियान की सफलता को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक 27,000 लोगों ने साक्षरता का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। पलवल जिले में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पलवल जिला में 10 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 24 अमृत सरोवरों का सौंदर्यकरण किया गया है। पलवल के खंड विकास अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि पलवल खंड में 5 गंदे तालाबों को अमृत सरोवर में बदला गया है।
3: जो भी अपने गंदे तालाब थे उनके एस्टीमेट हमारे एक्शन साहब द्वारा फंड अथॉरिटी को भेजे गए, वहां से पैसा मंजूर हुआ। पैसा मंजूर होने के बाद पलवल ब्लॉक 5 गांवों में 5 जोहड़ों का सौंदर्यकरण किया गया है। तो इसमें है किशोरपुर में 2 तालाब हैं, चिरवाड़ी में 2 तालाब हैं और एक ताराका में 1 तालाब।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 योजनाओं के तहत 1582 करोड़ 16 लाख रुपए हस्तांतरित किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन दौरे तहत ऑकलैंड पहुंचे। व्यापार, निवेश, सिक्ख्या, टैक्नोलॉजी और आपसी संबंधों में सहयोग को होर मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने की उम्मीद। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ में वख-वख थावां ते बूटे ला के वन महोत्सव 2026 की शुरुआत की। पंजाब में वोटर सूचियों की विशेष तीव्र सोध SIR 2026 प्रक्रिया लिए सूबे भर के सारे पोलिंग बूथों से कल तो दो दिन विशेष कैंप लगाया जाएगा।

0: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर नू लागू करने संबंधी सरकार नू अपना जवाब सौंपा अते मौसम विभाग वल्लों अगले 3 to 4 दिनों विच हरियाणा चंडीगढ़ अते हिमाचल प्रदेश विच भारी मीह पैण दी पेशीनगोई। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड के अपने इतिहासक 2 दिना दौरे की शुरुआत करते हुए ऑकलैंड पहुंचने से निघा स्वागत किया गया। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का लगभग 4 दहाकों में न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। ऑकलैंड पहुंचने से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। भारतीय भाईचारे की वड्डी गिनती विच मैंबर उन्होंने स्वागत लई एकत्र होए। यात्रा दौरान दोनों नेताओं के व्यापार निवेश सिक्ख्या तकनालोजी और आपसी संबंधों में सहयोग होर मजबूत करने के तरीकों की चर्चा करने की उम्मीद है। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ भर में कई थावां पर बूटे लाने के प्रोग्रामों की एक लड़ी च हिस्सा लेके वन महोत्सव 2026 की शुरुआत की। प्रशासक ने डड्डू माजरा डंपी ग्राउंड विखे बूटे लगाने की मुहिम का रस्मी उद्घाटन किया, जिथे उन्होंने जंगलात और जंगली जीव विभाग की हरियाली चंडीगढ़ कार योजना बारे किताबचा भी जारी किया। उन्होंने नागरिकों में वख वख किस्म के बूटे वंडन लई वन विभाग आपके द्वार पहलकदमी तहत 3 वाहनों नूं भी रवाना किया। प्रशासक ने मेयर सौरभ जोशी और चंडीगढ़ नगर निगम की विज्ञानक पौधे लगाने की कार्य योजना तैयार करने की शलाघा की। वन महोत्सव मुहिम सफल बनाने लई सरकारी विभागों NSS वॉलंटियर्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसीएशन स्वैच्छिक संगठन के नागरिकों के समूहिक उपरालों की भी शलाघा की। उन्होंने भरोसा प्रगटाया कि चंडीगढ़ दी वातावरण पहलकदमियां देश भर में इसी तरह के उपरालों में प्रेरित करदियां रहणगियां। श्री कटारिया ने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा प्रोग्राम NCAP अधीन तैनात 11 वाहनों भी रवाना किया, जिन्होंने पानी के छिड़का जैटिंग मशीनों और प्रभावशाली हवा गुणवत्ता प्रबंधन लिए होर उपकरण भी शामिल ने। चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने भी वख वख विभागों के होर सीनियर अधिकारियों के नाल इस मुहिम में हिस्सा लिया। पंजाब भर में चल रही विशेष तीबर सोध SIR तहत घर घर जाके गन्ना फार्म भरन कार्रवाई प्रगति अधीन है। कार्य 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इस प्रक्रिया को होर सुचारू बनाने लई कल 11 जुलाई और 12 जुलाई में सवेरे 8 बजे तो दोपहर 3 बजे तक सूबे भर के सारे पोलिंग बूथों से 2 दिन विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जिस नाल वोटर अपनी गणना फार्म भर सकते हैं तो जमा भी करवा सकते हैं। पंजाब के मुख्य चोण अफसर आनंदता मित्रा ने सूबे के वोटरों को इन्होंने कैंपों में सरगर्मी में हिस्सा लेने की अपील करदिया कहा कि जेकर किसी व्यक्ति ने अजे तक अपना गणना फार्म नहीं भरया तो तुरंत अपने बूथ लैवल अफसर नाल संपर्क कर इस विशेष कैंप दौरान अपने नजदीकी पोलिंग बूथ से भी जा सकते हैं। 3 अगस्त को प्रकाशित होने वाली खरड़ा वोटर सूची में हरेक योग वोटर का शामिल होना यकीनी बनाने लिए नागरिकों की सरगर्म जनतक भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बूथ लैवल अफसर इस प्रक्रिया में वोटर की सहायता वास्ते सारे निर्धारित पोलिंग बूथों से मौजूद रहेंगे। ये खबरें तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर नू लागू करने संबंधी सरकार नू अपना जवाब सौंप दिता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनालोजी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जवाब बारे पड़ताल की जा रही है। इस महीने की 1 तारीख नू सरकार ने भारत में व्हाट्सएप से यूजर नेम फीचर नू लागू करने संबंधी मैटा नू एक नोटिस जारी किया। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने मैटा नू इस फीचर बारे वेरवे समेत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने मैटा नू इस मामले से सलाह मशवरा पूरा होने तक यूजर नेम फीचर नू लागू ना करन दा भी निर्देश दिता है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान नाल जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल का पर्दाफाश करदिया 2 मुलजमान नू 8 किलो तो वध हैरोइन अते 2 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसिया कि कार्रवाई इंटेलीजेंस अदालत ऑपरेशन तहत की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुलजम खासा पिंड का लवप्रीत सिंह 28 साल BA पास नौजवान है, जिस खिलाफ पहला कोई अपराधिक मामला नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने मापिया और समाज में अपील की कि वह अपने बच्चों की सही ढंग से काउंसलिंग करें ता जो वह नशा तस्कर के झांसे में न आवन।
1: इंटेलिजेंस पेश

0: छापेमारी की जा रही है। उधर मानसा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 3 तहत कार्रवाई करते हैं 200 तों वध नशा तस्करों नूं काबू किया। सीनियर पुलिस कप्तान भागीरथ सिंह मीणा ने दस्सिया कि पुलिस ने 79 ग्राम हैरोइन 160 नशीलियां गोलियां 250 नशीले कैप्सूल 400 तीह लीटर लाहन 18 बोतलां शराब ते 5 वाहन भी बरामद किए ने। इस ऑपरेशन दौरान जिले अंदर वख-वख मामलों च लड़िंदे अपराधियों ते नशियां की सप्लाई करने वाले भगौड़ियां ते होरनां अपराधां नूं अंजाम देने वाले व्यक्तियों के टिकाणे ते भी छापेमारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशियां खिलाफ पुलिस कार्रवाई भविख विच भी इसी तरह जारी रहेगी। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब को समर्पित विशेष दस्तावेजी प्रोग्राम तहत बीते दिन जलंधर के वख-वख पिंडां विच गुरु जी के जीवन फलसफे ते सिक्ख्यावां दे आधारित विशेष दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। पिंड बुलंदपुर के रंधावा मसंधा विखे विशेष तौर पर शिरकत करदा हलका विधायक बलकार सिंह ने कहा कि सरकार वालों विशेष तौर पर तैयार वैनां ते एलईडी स्क्रीनां राहीं सूबे भर के पिंडां च श्री गुरु रविदास महाराज के जीवन ते फलसफे ते आधारित दस्तावेजी फिल्म दिखाई जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि इस विच गुरु जी दे जीवन उन्होंने महान सिक्ख्यावां समाजिक बराबरी सद्भावना ते मनुखी कदरां कीमतां नूं प्रभावशाली ढंग नाल पेश कीता गया है। उन्होंने कहा कि करतारपुर इलाके विच वी रोजाना 2 पिंडां च दस्तावेजी फिल्म दा प्रदर्शन कीता जा रहा है। समारोह विखे पीएम श्री सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल विच बिजली दी बचत किवें ते क्यों करिए विषय ते जागरूकता प्रोग्राम करवा के विद्यार्थियों नूं ऊर्जा बचत बारे जानकारी दी गई। इस मौके पंजाब राज बिजली कारपोरेशन लिमिटेड दे अधिकारियों ने हिस्सा लिया ते उन्होंने विद्यार्थियों नूं बिजली दी संजम नाल वरतों करन लई वख-वख विधियां ते तकनीकां बारे जानकारी दी। विद्यार्थियों ने इन्हां तरीकों नूं अपने रोजाना जीवन च अपनाउण दा अहद वी कीता। मौसम विभाग ने अज उत्तराखंड में भारी मीह की चेतावनी दी है। अगले 3 तों 4 दिनों में हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में भी भारी मीह पैण की संभावना जताई गई है। उधर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार मीह पै रहे। मौसम विभाग ने 5 जिलों कांगड़ा मंडी शिमला सोलन और सिरमौर में कुछ थावां पर भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। भारत अते इंग्लैंड दीआं महिला क्रिकेट टीमां विचकार लॉर्ड्स मैदान च खेडे जा रहे इको इक टैसट मैच दे पहले दिन दे पहले सैशन विच भारत ने 25 ओवरां च 3 विकटां दे नुकसान ते 122 दौड़ां बना लईआं ने। सुमति मंधाना 56 दौड़ां ते भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 14 दौड़ां बना के क्रीज ते मौजूद ने। दुपहर दे भोजन तोके दा खेड हाले खेडिया जाणा है। पंजाब बिजली बोर्ड ने जिला लुधियाना विच सब रजिस्ट्रार मलाब विखे तैनात पटवारी गुरजीत सिंह नूं 3500 रुपए रिश्वत लैंदे हुए रंगे हत्थी काबू किया। विजिलेंस ब्यूरो दे बुलारे ने दस्सिया कि मुलजम नूं जिला लुधियाना दे पिंड ताल खुर्द दे निवासी वल्लों दर्ज करवाई गई शिकायत दे आधार ते गिरफ्तार किया गया। बुलारे ने दस्सिया कि शिकायतकर्ता दे प्लाट दा विरासत इंतकाल शिकायतकर्ता ते उसदे परिवार नूं तब्दील किया जाना सी। मुलजम ने दस्तावेज लै ले ते इंतकाल करवाउण लई 5000 रुपए दी रिश्वत मंगी। इस मामले च अगली कार्रवाई जारी है। ते आखर च खास खबरां इक बार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन दौरे तहत ऑकलैंड पहुंचे। व्यापार निवेश सिक्ख्या तकनालोजी और आपसी संबंधों में सहयोग को होर मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने की उम्मीद। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ में वख-वख थावां पर बूटे ला के वन महोत्सव 2026 की शुरुआत की थी। पंजाब विच वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया लई सूबे भर दे सारे पोलिंग बूथां ते कल तों 2 दिनां विशेष कैंप लगाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर नूं लागू करन संबंधी सरकार नूं अपना जवाब सौंपिया अते मौसम विभाग वल्लों अगले 3 तों 4 दिनां विच हरियाणा चंडीगढ़ ते हिमाचल प्रदेश विच भारी मीह पैण दी पेशींगोई। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म होईआं। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 7:30। नमस्कार।
1: चंडीगढ़ केंद्र अमृत पाणी के तहत सरवण करते हैं कुछ शब्द। भाई बख्शिश सिंह जी की आवाज विच सरवण करते हैं ये शब्द।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और साथियों के गाए इस देशभक्ति रचना के साथ। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा है।

0: आप सुन रहे थे अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाज से थी। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ओ चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला।

हे रांझा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज लता मंगेशकर की आवाज थी, कैफी आजमी ने बोल लिखे थे, मदन मोहन ने धुन बनाई थी। जयमाला कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में आरंभ फिल्म का गीत। शकील अहमद ने इस गीत को लिखा है, संगीतकार हैं आनंद शंकर।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में आरंभ फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील अहमद ने इस गीत को लिखा, आनंद शंकर ने धुन बनाई थी। जयमाला कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गृहस्थी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायनी की ये रचना है, रवि की तर्ज़।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में गृहस्थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायनी गीतकार थे और संगीतकार थे रवि।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। जयमाला कार्यक्रम के बाकी गीत सुनिएगा इस अंतराल के बाद।

लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कमाल अमरोही ने बोल लिखे थे, गुलाम मोहम्मद ने तर्ज बनाई थी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत, संगीतकार शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम राजकुमार।

भोपाली जी, अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में आया तूफान फिल्म का ये गाना। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई।

असद भोपाली के लिखे और मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

0: हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको अनिल निगम का लिखा एक प्रहसन सुनवा रहे हैं, फोकट चंद।
1: घर में दफ्तर, बाहर दफ्तर, दफ्तर में दफ्तर। मैं कहती हूँ अपनी फाइलें समेटो।
2: अरे इन फाइलों में तो मेरा फ्यूचर है।
1: अजी अपना फ्यूचर खिसका लीजिए तो मैं आपके प्रेजेंट के कपड़े प्रेस कर दूँ।
3: ओफो मम्मी पापा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं?
4: आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है।
5: लो कर दी फाइल बंद। अब बताओ बेटी क्या बात है?
3: आप लोगों ने तो पूरे कमरे की दिन में लाइटें जला रखी है।
5: अरे खुदा पहाड़ निकली चुहिया, बेकार की बात बताने के लिए तूने मेरी फाइल बंद करवा दी। अरे अब तक तो मैं पूरी ड्राफ्टिंग कर चुका होता।
1: लेकिन तुम्हारी अक्ल कहीं नहीं पहुंची, जैसी शादी के पहले थी वैसी ही आज है। अरे कमरे में जब दिन का उजाला है तो ट्यूबलाइट और बल्ब बुझा क्यों नहीं देते?
5: अरे फोकट चंद की शान फोकट की बिजली जलाने में है, चाहे ऑफिस हो या घर। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी शान में बट्टा लगा दूं?
1: नहीं, शान में लगाम तो लगा ही लो, कहीं ऐसा ना हो अपनी शान की बदौलत ना तुम घर के रहो ना दफ्तर के।
3: पापा, ये फोकट की बिजली का क्या चक्कर है?
5: बेटा यही तो बिजनेस सीक्रेट है इस किराए के मकान का।
1: अरे पहले ही बुझाओगे।

0: भी बताओगे। पापा आप तो हमेशा किश्तों में सस्पेंस खोलते हैं ना, आजकल की फास्ट लाइफ में ये सब नहीं चलेगा।
1: अच्छा अच्छा, जो चल रहा है वो सुन लो। तुम्हारे पापा और इनके पति यानी कि मैं फोकट चंद अपने मकान मालिक नेक चंद को केवल मकान का किराया देता हूँ, बिजली का कुछ नहीं।
0: मत समझी, इसीलिए आप लोग दिल खोलकर बिजली खर्च कर रहे हैं।
1: भाई ऊपर वाले ने जब छप्पर फाड़ कर दिया है तो खर्च करने में कंजूसी किस बात की। अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे, बिना कोई नोटिस दिए तुम अचानक रोने क्यों लग गई?
2: मुझे गुस्सा लग रहा है।
1: क्यों?
2: इतनी सी बात मैं क्यों नहीं समझ पाई?
1: अरे मैं तो डर ही गया था।
2: सुनो जी, मुझे रुपए चाहिए अभी इसी वक्त।
1: देखो जी, बिजली जितनी चाहे खर्च कर लो, लेकिन
2: अरे मैं बिजली खर्च करने के लिए रुपए मांग रही हूँ।
0: बिजली खर्च करने के लिए रुपए?
2: हाँ हाँ रुपए, तुम लोगों की चाय की फरमाइश पूरी करने के लिए बिजली की केतली, साफ सुथरे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और गैस की बचत के लिए बिजली का चूल्हा, इस घर के लिए जरूरी है या नहीं?
0: जरूरी है। डैडी हेयर ड्रायर खरीदूंगी मैं।
1: और मैं खरीदूंगा बिजली से शेव बनाने वाली मशीन।
2: हाय हाय।
1: लेकिन ये सब खरीदने के लिए तो रुपए बहुत चाहिए
2: जी। आप तो किश्तों के मरीज हैं, ये सारा सामान किश्तों पे ले आइए।
1: तुम ठीक कहती हो।
0: एक ही अंधकार में बैठे बैठे चाय पी रहे हो, लाइट तो जला ली होती।
3: अभी शाम के उजाले में तुम्हारे हुस्न का दीदार अच्छी तरह कर सकता हूँ।
2: इश रसगुल्ला के माफिक मिष्टी बातें बनाना तो कोई आप से सीखे। ओए माँ, आमी तो भूले गए जी।
3: ये क्या है?
2: ये लीजिए।
0: ओफो, जरा लाइट जला के रोशनी में देखिए ना।
3: बिजली का बिल?
0: जी हाँ।
3: अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी बिजली तो हम लोग जलाते भी नहीं।
0: लेकिन आपके हम लोग की पूरी भाषा में आपके किराएदार फोकट चंद और उनका परिवार शामिल नहीं है क्या? और ये उन लोगों ने तो अपने घर में बिजली के सामान की दुकान लगा रखी है।
3: ओफो, मुझे क्या पता था फोकट चंद मेरी सिधाई का इतना फायदा उठाएगा।
0: अब तो पता चल गया है, आगे सोचो क्या करना है।
3: पानी सर के बहुत ऊपर निकल गया है, लेकिन इलाज है मेरे पास।
0: क्या करेंगे आप?
3: अरे उनके पोर्शन में बिजली का सब मीटर लगवा दूंगा और उसी की रीडिंग के मुताबिक फोकट चंद को भी बिजली का भुगतान करना होगा।
0: किंतु अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो?
3: डाल डाल और पात पात का खेल खेलना मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। बात ना मानने पर कह दूंगा कोई और मकान तलाश कर लो, फिर तुम देखना तेल और तेल की धार।
2: ओए माँ, तुमने फोकट चंद का एकदम शोई नबज टटोला है। अलादीन का चिराग लेकर भी वो दूसरा घर तलाश नहीं कर पाएगा।
1: बड़ी मुश्किल से
2: तो शेव बड़ी जोरदार बनी है।
1: ये सब इसी इलेक्ट्रिक शेवर की मेहरबानी है।
0: मम्मी वो मम्मी, जब से घर में वॉशिंग मशीन आई है तब से तुम्हें कपड़े धोने की बीमारी लग गई है। हर वक्त तुम्हें कपड़े गंदे ही नजर आते हैं।
1: बेटी ये सोचकर तुम क्यों दुबली हो रही हो? अरे जब तक इन्हें बिजली मिल रही है तब तक इनके कपड़े धोने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
2: मकान मालिक ने चंद को कलकत्ते वाली को बहा के लाया है। और कितना एक है आपस में, एक तो वो कपड़े धुलवाने के लिए मुझसे शादी की थी।
1: लाजो, अरे लाजो, इन आंसुओं को रोक लो। अरे कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू इस घर में बाढ़ लाकर हम सबको तबाह कर दे और मैं एक भूली हुई खुशखबरी तुम्हें ना सुना पाऊं।
2: खुशखबरी? खुशखबरी? और वो भी तुम्हारे मुंह से? मुझे यकीन नहीं होता।
1: तुम्हें तो यकीन ना करने की बीमारी हो गई है। अरे जब ऑफिसर की बीवी कहलाओगी तब समझ में आएगा तुम्हें।
2: क्या बुढ़ापे में तुम मुझे तलाक देने वाले हो?
3: ऐसा मेरा सौभाग्य कहाँ?
1: अरे मैं तो खुद बड़े बाबू से ऑफिसर बनने का ख्वाब देख रहा हूँ। अगर बास शर्मा जी की मेहरबानी हो जाए तो ये सपना सच भी हो सकता है।
2: अरे तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो शर्मा जी की मेहरबानी हो ही जाएगी।
1: मैंने अपना प्रमोशन का भला देखने के लिए कल शर्मा जी को खाने पर बुलाया है।
2: हो गए छुट्टी,
1: देखता हूँ प्रमोशन कैसे नहीं मिलेगा।
2: प्रमोशन और वो भी तुम्हारा? जी मैं तो रिटायरमेंट तक तुम्हारी नौकरी सही सलामत बनाए रखने के लिए भगवान से हमेशा दुआएं
1: मांगती
0: हूँ। पापा मैं तो आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताने आई थी और यहाँ आकर आप लोगों की बातों में उलझ गई।
2: अरे

0: जी, इनकी बातें तो द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती ही चली जाएंगी। तुम अपने कहो बेटा,
1: कल आप लोग जब वॉशिंग मशीन खरीदने गए थे ना, तब नेकचंद अंकल आए थे।
0: नेकचंद जी, खैरियत तो है?
2: और किराया लेने आए होंगे।
0: क्या तुमने अभी तक किराया नहीं दिया?
3: कहाँ से दूं? इस समय तो रुपए बिजली का सामान खरीदने के लिए दुकानदारों को दे रहा हूँ किश्तों में।
1: पापा, नेकचंद अंकल कुछ देकर भी गए हैं।
0: लेने आए और देकर चले गए, कुछ बात समझ में नहीं आती।
3: अरे मेरी किस्मत में अगर कुछ पाना लिखा है तो तुम्हें ज्यादा समझने की क्या जरूरत है
0: जी?
3: अच्छा बेटी, दिखाओ तो क्या देकर गए हैं नेकचंद जी?
1: पापा, अंकल बिजली का सब मीटर देकर गए हैं।
0: क्या?
3: बिजली का सब मीटर?
0: सब मीटर?
1: हाँ, उन्होंने हम लोगों के पोर्शन में बिजली का सब मीटर लगवा दिया है।
3: मारे गए।
1: और कहे गए हैं उसकी रीडिंग के मुताबिक किराए के साथ साथ बिजली का भी भुगतान करना होगा।
3: भुगतान?
1: हाँ, ये भी कह रहे थे अगर आपको ये मंजूर ना हो तो कोई दूसरा मकान तलाश कर ले।
3: अरे ये तो बहुत बुरा हुआ।
1: पापा, अगर आपने बिजली के सामान का इस्तेमाल ही करना छोड़ दिया तो आपकी शान का क्या होगा?
0: मेरी आदत तो सारा काम बिजली के सामान से करने की बन गई है।
3: लाजवंती, तुम ठीक कह रही हो, बिजली के सामानों का इस्तेमाल तो करते ही रहना होगा। बॉस के आगे इम्प्रेशन भी तो जमाना है। प्रमोशन के बाद देख लूंगा नेकचंद को।
0: बिल्कुल ठीक।
4: पता नहीं ये सुबह सुबह अखबार कहाँ रख देती है। अरे लकी, आज का अखबार कहाँ रखा है भाई?
5: ए, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे सामने तखत पे तो रखा है।
4: ठीक है, मिल गया है।
6: गर्मी की तपिश से जनजीवन अस्त व्यस्त।
5: सुनिए, ये फोकटन अपना किराया कब देगा? समझ में नहीं आता ये बिजली का सौ मीटर लगने के बाद भी एतो बेसि बिजली क्यों खर्चा कर रहा है?
4: बिजली की कटौती। लक्ष्मी, अरे ये है आज की जोरदार खबर फोकट चंद को सबक सिखाने के लिए।
5: कौन सी खबर पढ़ के खुश हो रहे हो?
4: यही कि बिजली की कमी से निपटने के लिए कल से 8 घंटे बिजली की कटौती का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
0: बेशोइचे, अब पता चलेगा फोकट चंद और उनके परिवार को।
3: अरे लाजवंती, अगर इसी तरह कछुए की चाल चलोगी तो अगले 7 जन्म तक भी मेरे प्रमोशन का पता नहीं चलेगा। अरे बॉस के आने का समय हो रहा और तुमने अभी तक खाना भी नहीं बनाया।
0: ये गर्मी देख रहे हो और सुबह से लाइट नहीं आ रही। रोज खाना पकाने का सारा काम बिजली के चूल्हे पर होता था।
1: मम्मी, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है।
0: क्या?
1: बिजली की कटौती लागू हो गई है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली नहीं आया करेगी।
0: मुझे पता है।
1: और पापा, मेरे स्कूल की फीस जानी है। कल तक अगर फीस ना जमा करी तो मेरा नाम कट जाएगा।
0: बेटा, क्यों जी, तुमने बच्चे के स्कूल की फीस भी नहीं जमा की?
3: कहाँ से दूं? तनख्वाह के सारे रुपए तो बिजली के सामानों की किस्तें अदा करने में चले गए।
0: नतीजा ठन ठन गोपाल।
3: लो जो, मेरे कपड़े निकाल दो। अगर बॉस ने मेरे गंदे कपड़े देख लिए तो क्या सोचेंगे?
0: तुम भी तो सोचो, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, मैं क्या करूं?
1: पापा, शर्मा अंकल के लिए बर्फ तो ले आई, इतनी गर्मी में क्यों ने गर्म पानी पिलाई है?
3: अरे इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। घर में फ्रिज है और बर्फ ले रहे, बाजार जाना पड़ा।
0: सूरजी, बाजार से मोमबत्ती और हाथ से डुलाने वाला पंखा भी लेते आना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बॉस अंधेरे में बैठे बैठे पसीने से तर बतर होते जाए। बिजली का क्या भरोसा, न जाने कब आएगी।
3: लगता है बिजली की कटौती हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर रहेगी। अब खाने के बारे में तो सोचो, अगर बॉस को खाली ठंडा पानी पिलाकर विदा कर दिया तो अपने प्रमोशन का मामला भी ठंडा पड़ जाएगा।
0: जी, जब बाजार जा ही रहे हो तो वहाँ से खाना भी लेते आना। अरे इतनी जल्दी बिना इस बत्ती के इस गर्मी में भाई मैं तो खाना नहीं बना पाऊंगी। हाँ,
3: अरे बेटा देख बाहर कौन है, जरा देख।
1: अच्छा पापा।
7: सर, आइए सर, आइए इधर आराम से बैठिए। सर,
8: लगता है मैं समय से पहले आ गया हूँ, कहीं जाने की तैयारी
7: है? सर, यही तो आपका सबसे बड़ा गुण है। सर, समय से पहले पहुँचना मंजूर है आपको, 1 सेकंड की देर करना बर्दाश्त नहीं। समय की पाबंदी तो कोई आप से सीखे। सर,
8: आज कुछ गर्मी ज्यादा है और ये पंखे भी नहीं चल रहे।
7: ये सब बिजली की कटौती का नतीजा है सर।

0: काश बिजली आती तो मैं आपकी बेहतर खिदमत कर पाता सर।
1: अच्छा, अगर बिजली आती है तो आप क्या करते?
0: सर बहुत सा सामान बिजली का है मेरे पास, आराम से रहने और लोगों को आराम पहुंचाने के लिए।
1: अच्छा, क्या क्या सामान है आपके पास?
0: बिजली का चूल्हा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक केतली, कूलर और न जाने क्या क्या सर। और अब तो प्रमोशन के बाद एसी खरीदने का भी इरादा कर रहा हूँ सर।
1: प्रमोशन? और वो भी तुम्हें? कभी नहीं।
0: क्यों सर, ऐसा क्या किया है मैंने जिससे मुझे प्रमोशन नहीं मिल सकता सर?
1: फोकट चंद, मुझे ऑफिस के लिए एक बिजली बचत अधिकारी की जरूरत है।
2: सर वो बिजली के कटौती से परेशान हो गए, ये ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। न जाने आपसे कौन ऑप्शन आप बक रहे हैं।
1: अच्छा मैं चलता हूँ।
0: सर, सर, सर।
3: पापा पापा, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है।
0: अरे चुप, मेरा प्रमोशन भी गया और साथ में पोकट की बिजली भी गई।
4: फोकट चंद, अभी आपने अनिल निगम का लिखा ये प्रहसन सुना। इसका निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर ने किया। लखनऊ केंद्र से प्राप्त इस नाटिका के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

नेहा कक्कर और यो हनी सिंह की आवाजों में यारियां फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार और संगीतकार थे यो हनी सिंह। अब आपको सुनवा रहे हैं एक पहली लीला फिल्म का ये गीत। मीत ब्रदर संजान और कृष्णा बेरुआ की ये आवाजें। गीतकार हैं कुमार।

0: तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ें सुनिधि चौहान, उज्जैनी मुखर्जी और साथियों की थी। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। बाकी गीत इस ब्रेक के बाद।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

0: श्रेया घोषाल, मधुश्री और बेला शिंदे की आवाजों में ये गीत सुन रहे थे पहली फिल्म से, और संगीतकार थे M.M. क्रीम।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
4: रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी
2: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
6: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
5: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर

0: मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान

0: तत् डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

0: आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेक दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से। अगला प्रोग्राम आपके लिए, ये प्रोग्राम से विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का।

प्यार की प्यास फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें लता मंगेशकर और तलत महमूद की थी, भरत व्यास की रचना थी, वसंत देसाई की धुन थी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत। संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान में बोल लिखे थे, ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

कन्यादान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी। यह है आखिरी दांव फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश के पहले आपने मोहम्मद रफी की आवाज में आखिरी दांव फिल्म का गीत सुना था। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे मदन मोहन। अब लीजिए सुनिए ये गीत।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म पारस का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। और इसी गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से आज के फनकार। ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
3: चंदा मामा दूर की पुए पकाए भूर की।
2: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
4: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
2: संगीतकार रवि,
4: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आ

सियासत भोपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

भी इससे अछूती नहीं थी। कई कलाकार, फनकार, संगीतकार और गीतकार अपनी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई की राह लिए हुए थे। अगर गीतकारों की ही बात करें तो मजरू सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर, खुमार बाराबंकी, प्रेम धवन, राजेंद्र किशन जैसे दिग्गज गीतकार इस दौरान काम पाने की होड़ में जुटे हुए थे। यही नहीं, साहिर लुधियानवी जैसे पाए के शायर को भी असद भोपाली साहब के साथ ही एक हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो ऐसे में काम पाना एक बड़ी चुनौती भरा काम था।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे एस एफ हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और एस एफ हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें

ऑफर मिला। इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे। संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुनवा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे, वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बी आर चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थी। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई ना आ सके।

जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती भारत का गम एक्सपर्ट।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। प्यार मोहब्बत इश्क की बातें आसान कहाँ हैं। एक ओर उनके दीदार का रहता है इंतजार, तो वहीं उस नजर का तीर भी हो जाता है दिल के आर पार। नजरों की इनायत और नजरों की बगावत का अंदाजा तो उन्हीं को है जिन्होंने खाई है चोट एक नजर की। वो एक नजर जो दिल को अपने साथ बांध ले जाए, या वो नजर जो दिल को तार तार कर जाए और दिल आह भर कर ये कह उठे।

ये प्यार करना अब इस दौर में आसान रहा है। दुनिया जमाने की नजरों की परवाह कहाँ चैन लेने देती है प्रेमी युगल को। न मिलना आसान है न बातें करना, मुलाकात यूं खत्म हुई जाती है कि मानो पलक झपकी और वक्त बदला। आखिर ये दिल दीवाना भी खुद को संभाले कब तक। कभी थामा जो हुस्न का आंचल तो बेबस नजर कह उठती है करती है यही गुजारिश।

नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मिलने की तमन्ना है और चारों ओर जमाना है। जमाने के इस पहरेदारी के बीच आखिर दो दिल मिले तो किस तरह, ना दो बातें हो सकती हैं, ना नजरें चार। भाई कैसे संभाले ये दिले बेकरार, ना छेड़ा कोई तराना, ना बजाई कोई धुन, ढलने लगी है शाम, अब ये तो बताओ कैसे ढूंढे तुमको हम।

0: आप सुन रहे हैं छाया गीत। भाई बहुत हुई दुनियादारी, मोहब्बत की भी है अपनी जिम्मेदारी। अब इस दुनिया के सामने कर दिया है ऐलान, जो करना है कर लो, देखा जाएगा अंजाम। इस दुनिया से अब डरने का समय हुआ खत्म, आहें ना भरेंगे खुल के कहेंगे हम, क्या हुआ जो दिल हमने दिया, क्या हुआ जो दिल तुमसे लिया। मोहब्बत के दुश्मन है जमाने सुन ले, की है मोहब्बत कोई चोरी तो नहीं, दिल के बदले लिया है दिल, अब तेरी सुनेंगे नहीं।
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो

0: भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहां होते हैं। होकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहां होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा लैला, ओ लैला लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत।

0: ना सताओ हमको, हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको।
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: हमने तो इश्क में दुनिया भुला दी और वो हमसे पूछते हैं कि तुम हमारे हो कौन। अब तक तो सताती रही दुनिया की रस्में, अब कैसे तुम्हें समझाए अपने दिल की कसमें। वो तुम्हारी आंखें ही थी जिन्होंने किया था पहला वार, और काम से गया था अपना ये दिल बेकार। अब करोगी ऐसी बातें जनाब, तो इश्क का इश्क से ही मिलेगा जवाब।
3: जहां मैं

आ ही गई वो प्यार की देवी हमारे सामने, देख के जिसको लगा ऐसा कि अपने दिल को थाम ले। अब क्या करेगी ये दुनिया सारी, वो तो खुद ही उसके हुस्न परवारी। कल तक जो कहते रहे।

0: छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। मोहब्बत और दुनिया की जंग तो जारी रहेगी, लेकिन अपनी दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामान्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मर क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
0: रहो सुनो बी प्राक्नो।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.ORG.IN पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और

0: चौदह में चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश के वाणिज्यिक कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz 11:05 हो चुके ने। हुण साडी अज दी सभा खत्म हुंदी है। सवेरे 5:55 ते फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई इजाजत दिओ। जय हिंद।